0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबी सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 247 365।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक, 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तआवुन से।
2: This public service message is brought to you by FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीनों की पाबंदी कीजिए। Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله

0: 6:08 a.m. The Shine Check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330153153 4 और 5.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त आईबीएफटी, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत जवाबित लागू है. अस्करी बैंक.

0: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330153 1534 5।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो,
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शरायतें जवाबित लागू हैं।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट
8: के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंट्रोसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
12: शरायत जवाबित लागू हैं।
13: This program is brought to you by।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
15: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
16: And payment usul kare haath ke haath, barahe raast.
15: And Dettol filter. Ye badbu phailane wale germs ko door bhagaye.
16: And
17: Eid ki har daawat mein rahe dil ko aaram. AGS tubular battery.
1: And HBL freedom account. Jahan khwab, wahan HBL.
17: And dil ke itminaan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
18: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
19: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
20: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
21: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
22: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
23: ہماری ذمہ داری ہے۔
24: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
19: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
25: لائک اس آن facebook.com/FM247365
26: FM247365
25: ایف ایم 100
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.

0: 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 or 5.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है. जर्मन साइंस से निखरा ये मियार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद.
2: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 or 5.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
0: This program is brought to you by.
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
9: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त.
0: एंड
8: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
0: एंड
10: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम. AGS ट्यूबलर बैटरी.
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिस्पन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: It's 9 a.m. The Shine Check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 or 5.
6: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.

0: अभी पे 20,000 रूपए। बस हस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रूपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
2: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रूपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
5: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
9: प्लाट बनाए फरो।
8: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसे टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू है।
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
10: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
11: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रूपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500।
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
7: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
12: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
13: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: पाकिस्तान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
4: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: And
5: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
3: And
6: payment वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: And
5: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाएं।
3: And
7: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी।
3: And
8: HBL फ्री रिमोट। जहां ख्वाब वहां HBL।
3: And
7: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
9: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365.
11: Let's celebrate
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

बात करें, सुष्टुओं में सवाल सारे जो गलत फहमी में बदल गए वो दूर करें। मोहल्ले में भी शोर है, हाँ है ये कैसा दौर है, सच बताऊं।

0: 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां खा वहां HBL।
5: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
9: प्लाट बनाए फरो।
8: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसे टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू है।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
11: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
12: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां खाब वहां HBL।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
14: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
15: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
16: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू हैं।

0: पाकिस्तान।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए. फी हिस्सा 24,950 रुपए. आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5.
5: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.

0: स्टमक में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: This program is brought to you by.
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
0: एंड डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
10: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
11: एंड HBL फ्री रिमोट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
12: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर बादल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहिब कर चुका होता है। बक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस समल का ताना माना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाएं। एयरपोर्ट्स के खिलाफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती हैं और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
15: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: H10 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Vikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features
0: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today
0: and
5: payment usool kare haath ke haath barah raast
0: and
4: Dettol filter ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye
0: and
6: Eid ki har daawat mein rahe dil ko aaram AGS tubular battery
0: and
7: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
0: and
6: dil ke itminan ke sath islamic banking hai sab ke liye
7: HBL freedom account ke sath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan muft IBFT muft checkbook मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
8: चौबीस सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। चौबीस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 सालों से आपका एतमाद।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365।
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: FM 100،
8: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

0: Tell her of it. It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया जा रहा है।
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बराए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू है।
5: ख़वातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। This public service message is brought to you by FM 100.
6: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365
8: Let's celebrate
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: In the rhythm of life, when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
10: The music plays on. Plays on.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरोख,
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू है।

0: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
1: नई स्कीम
2: कमिटी
3: लाड बनाए फरो
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक शराइत जवाबित लागू है
5: facebook.com/fm247365
6: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.

0: your host, DJ Chrisella.
1: DJ Chrisella!
0: FM 100 Pakistan wishes all its listeners Eid Mubarak to you and your family. Stay happy always and stay tuned with DJ Chrisella!
2: All right, Ray friends, welcome back. Yes, stay happy. Stay safe and enjoy a lovely, lovely Eid. If you just joined in, agar aapne abhi join in kiya hai, to hamari taraf se FM 100 Pakistan ki taraf se. Hello, watan ko khushiyan, bahut, bahut, bahut, bahut Eid Mubarak. To bataye, message ke zariye aaj thoda sa ho jaye ek twist. Amuman aap log mujhe call karte hain. Agar is saal is Eid pe maine socha hai ki aaj sirf messages ke zariye aap log se taluqat rakhu. Because calls pe na kuch zyada hi ho jata hai. So I thought let's have it, you know, in a very small and very simple mode, message ke zariye. आप मुझे बताएंगे कि आपकी ईद की सेलिब्रेशन सुबह सुबह कैसे शुरुआत हुई थी, आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पकने वाला है, कुर्बानी हो चुकी है आपके घर में, और अगर नहीं तो अगर कहीं जा रहे हैं, दर्जी ने कपड़े आपके टाइम पे दिए, अब तो दर्जी बहुत दूर की बात हो गई, अब तो हर चीज यू कैच ऑन ऑनलाइन एंड देन यू गो इन टू द बुटीक्स एंड देन यू पिक अप योर आउटफिट्स, यार चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, एवरीथिंग इज सो एवरीथिंग, कहते हैं ना रेडी टू वेयर, यू नो रेडी टू ईट तो बहुत दूर की बात है मगर रेडी टू वेयर तो सब कुछ है. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ड्यूरिंग ईद, आप लोग करते रहते हैं और तो बताएं आपकी सेलिब्रेशंस कैसे हैं, क्या क्या मसरूफियात है आज, मैं तो जानना चाहती हूँ. और इसी के जरिए ये एक कॉम्पिटिशन भी है, तो आई वॉन्ट टू नो कि आपके घर में क्या क्या, झूठ नहीं बोलना है मैसेज के जरिए, खुदा को मारो अल्लाह से डरो, झूठ नहीं बोलना कि मेरे घर में डीजे गजल आ जाए, ये ये ये ये ये है, क्योंकि कुछ नहीं होगा ऐसा और फिर मुझे पता लग जाएगा, फिर मुझे टेंशन हो जाएगी. तो क्योंकि आप मुझे मैसेज करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा, तो मैं तो जी फुल इन्वेस्टिगेशन करूंगी कि आपके घर में ये हुआ कि नहीं हुआ. पड़ोसियों से पूछूंगी, पड़ोसियों से, पड़ोसी कभी भी झूठ नहीं बोलते. खैर, थैंक यू सो सो वेरी मच. Stay tuned to the Ever So Radio 100 Pakistan. I'm coming in with an Angrezi Ghana before I go in for another good number. But okay, it's all about Eid celebrations. A very good morning to you, Auntie Berna. Thank you so much for your Eid greetings and love you for this one. This song's for you.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

Well, exactly. One more. I'm Dunya Badal Denge. Thank you so much for joining in. A very good afternoon to everyone. Seriously, यार मैं जब ये मॉर्निंग शोज करती हूँ ना तो मुझे तो एक इम्तिहान में मैं बैठ जाती हूँ. मुझे तो याद रखना पड़ता है कि यार सुबह है कि शाम है कि दोपहर है. खैर, मजाक अपनी जगह पे. हम तो इंजॉय कर रहे हैं. आपके मैसेजेस भी हम तक पहुंच सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. अपने सेलफोन के जरिए अपने मैसेज बॉक्स में चाय का मैसेज टाइप करने से पहले आपने लिखना कि चाय एक स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताइए कि आपकी सेलिब्रेशन में आज क्या क्या मसरूफियात है. यू कैन बी अ लकी विनर. यू कैन विन गिफ्ट्स टू द एपिसोड रेडियो 100. बट इन द मीन टाइम कमिंग इन विद नूरी विद हम दुनिया बदल देंगे.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
3: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

सोए जो अकेला जन्नतों में खेला, ऐसे ही किसी का वास्ता, पैदा हो गवाही तेरे घर से आए, ऐसे ही किसी का वास्ता।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम ईद फेस्ट का बाकायदगी से आगाज। जी हाँ, आज हमारा और आपका साथ है एक से तीन के दरमियान, जहां पर हम खूब सारी बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप सबको ईद मुबारक एक बार फिर से, और आज का दिन यानी कि मसरूफियत और बहुत सारी मसरूफियत। अच्छा भाई, इस वक्त जो है ना वो एक टाइम चल रहा होता है कि सुबह किसी ने स्लॉट बुक किया हुआ होता है, दोपहर में किसी का स्लॉट होता है और शाम में, मतलब ये मसरूफियत चलती ही रहती है। बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सारे कामकाज कर ना अब बिस्तर पकड़ लिया और कहा कि बस अब आराम करेंगे, अब शाम में उठेंगे। लेकिन वहीं कहीं ऐसे लोग भी इस वक्त मौजूद हैं जिनको अभी बिस्तर पकड़ने का वक्त नहीं मिला है, अभी तो असल काम का सिलसिला शुरू हुआ है। तो भाई सबसे पहले आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। और हमें जरूर बताएं कि ईद का ये दिन आपका कैसा गुजर रहा है, क्या है मसरूफियात, क्या है आपके हाल अहवाल, जो ईद पर कपड़े सिलवाए थे वो पहन लिए हैं या नहीं, मौसम के बेहतर होने का किया जा रहा है इंतजार। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई जो खूबसूरत से कपड़े आपने अपने सिलवाए हैं ना, वो अभी नहीं, थोड़ा शाम का इंतजार करें, क्योंकि इस वक्त तो कराची में बड़ी गर्मी है भाई। और वो जिस पर आपने टेलर से लड़ लड़ के लेसें लगवाई, इतनी मेहनत से उसे सिलवाया, उसे पसीने की नजर ना होने दें, इसलिए शाम का इंतजार जरूर करें और शाम के बाद ना आप इन कपड़ों को पहने। अच्छा, मर्द हज़रात तो यही करते हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो कपड़े पहनते हैं वही वाले ईद के, और फिर आते साथ उसे उतार के ना बेचारे कोई भी आम से कपड़े पहनकर कसाईयों के साथ लग जाते हैं, तो ये सूरत हाल है। तो भाई नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर के क्या प्लान है, इस पर भी होगी तफसीली बात, क्योंकि भाई मजे मजे के चटपटे पकवान बनने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। अच्छा, कलेजी का जहां तक बात है वो मेरे ख्याल से अब तो नहीं, बिकॉज वो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के नाश्ते में ज्यादा प्रेफरेंस होती है। तो क्या आपके में यही सूरत हाल है या फिर किया जा रहा है दोपहर का इंतजार, या कलेजी खाने की आप बड़ा दिल चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कुर्बानी नहीं हुई है। देखिए हर तरफ मुख्तलिफ सूरत हाल चल रही है, तो आपका क्या स्टेटस है हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम ब्रेक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।

0: से दिखाए अपना काम। AGS Tubular Battery।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: Yes, everybody. So, आप लोग सब सुन रहे हैं प्रोग्राम ईद फेस्ट विद फातिमा खान. और जी हाँ, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है और वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं. कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, बस यही फिलहाल सूरत हाल है. कहते हैं, ईद का ये खूबसूरत दिन भी है और आपको और एफएम 100 की टीम को और लिसनर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक. यस, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी मुबारक हो. कहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप इस जैसे हजारों ईदें मनाएं. आमीन. कुर्बानी हो गई है, ईद डे घर में गुजर रहा है. टिक्का, ओ माय गॉड, वेरी नाइस, लंच में टिक्का है, वाह भाई वाह. कहते हैं, आपके लंच में पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. ठीक है जी रशीद खान, हम जरूर आपके पसंद के ट्रैक को शामिल करेंगे, डील डन रही. और इसी के साथ साथ इनके लंच में जो टिक्का है भाई, और लोगों के लंच में क्या पक रहा है. वैसे अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो एक बजे के बाद हम एक्चुअली में लंच और रेसिपीज पर बात शुरू करते हैं. और आज तो मैं आपके साथ मौजूद ही एक से तीन के दरमियान हूं, यानी कि ऑफिशियली देखा जाए तो लंच टाइम हो चुका है. यस, लंच टाइम हो चुका है. और जिक्र लंच इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ होता है, या फिर कोई नई रेसिपी हम आप लोगों से शेयर करे होते हैं कि यार ये ट्राई करें या वो करें. तो भाई फिलहाल आज के दिन को तो मैं बिलखसूस कहूंगी कि जरा मशरूबात पर ही ज्यादा फोकस करें. आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आज तो टू मच गर्मी है. तो इस दौरान तो सजेशन यही है, वैसे तो मैं आपको रोजाना कहती हूँ, लेकिन आज क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है, कुर्बानी है, आप लोगों के ऊपर बर्डन है, तो आज तो मशरूबात ज्यादा से ज्यादा पिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए जो कि हम लोगों ने खरीदी है कि भाई बारबेक्यू शारबेक्यू के साथ पी जाएंगी, तो वो उस वक्त पी लें. चलें पी लें, कोई बात नहीं, ईद का दिन है तो क्या रोकना. लेकिन वैसे पानी आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा पिए, नींबू पानी जरूर पिए, इस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि आपको हाइड्रेटेड रखे, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना होने दें. अपने सर को कवर रखें या फिर मुसलसल अपने सर पर पानी डालते रहें, या कैप पहन लें या दुपट्टा, खवातीन ऑब्वियसली वो सर पर रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त गर्मी है और रियल फील्स लाइक तो इस वक्त 42-43 है. यस, दिस इज टू मच. लेकिन एक तरह से ना ये गर्मी और ये धूप ठीक भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना वो जो एक स्मेल होती है वो नहीं हो रही है. एंड द वेरी गुड थिंग इज दैट कि सफाई का सिलसिला भी जारी है, और अच्छा है सफाई का सिलसिला जारी है. इसमें जरा आवाम से भी गुजारिश है कि जरा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें. ये कहा जा रहा है कि जी अपनी जो भी ये सामान है, जो भी अलाइशियां वगैरह, ये सब कुछ अपना जो है वो मेन रोड पर फेंक दें, तो गलियों को गंदा ना करें, इस चीज का आपने ख्याल रखना है. सो प्लीज मेक श्योर कि गंदगी में इजाफा ना करें, सफाई सुथराई का सिलसिला जारी है, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें. इन तमाम चीजों को अपनी गली से हटाकर मेन रोड पर फेंक दें ताकि वो बासानी ले जाएं, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है. और इसी के साथ साथ हम ब्रेक की जानिब चलते हैं और फिर वापस आकर जानते हैं कि भाई आपके लंच में क्या पक रहा है या फिर क्या पकने जा रहा है.
1: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

यस एवरीबॉडी, सो रशीद खान के ट्रैक के साथ हम वापस आ गए हैं। और भाई आज जो ईद है, ईद उल अज़हा हम लोग सब मना रहे हैं, और मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दौरान आपकी पसंद के ट्रैक्स को शामिल ना किया जाए। ना ना ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। और इस तरीकाकार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है हमें जरूर बताएं। इस वक्त आप गाड़ी में हैं, सफर कर रहे हैं अपनी नानी के घर जाने के लिए, दादी के घर जाने के लिए, खाला के घर जाने के लिए, मामू के घर जाने के लिए, चाचू या फिर ताया के घर जाने के लिए, या फिर अपने ससुराल जाने के लिए। तो क्या सूरत हाल है भाई, हर तरफ हर जानब कुछ ना कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल चल रही है। और ईद का पहला दिन बड़ा स्पेशल होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ना सबके सर पर ईद के पहले दिन ही होती है। बिकॉज ईद का पहला दिन वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, और ये सूरत हाल होती है। तो आपकी क्या सूरत हाल है, इस वक्त कहीं जाने का इरादा है या फिर नहीं, गर्मी के थमने का इरादा है कि जी गर्मी जरा थमे, मौसम जरा बेहतर हो तो फिर जो है वो सवारी चले यहां को या फिर वहां को। तो क्या स्टेटस है हमें जरूर बताएं। और ईद मतलब पिछले साल ईद को कह लें, इस साल ईद को कह लें, एक जो बड़ा ट्रेंडिंग चीज रही ना वो है ये कि मेरा पिया घर आया। ओ माय गॉड, आपको हर रील्स पे हर उस पे नजर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब हर जाने नजर आ रहा है तो थोड़ा सा क्यों ना हम भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें मेरा पिया घर आया। तो बहुत सारे लोगों की जैसे ही जानवर आ रहे थे तब वो ऐसे लगा रहे थे ज्यादातर एक्साइटमेंट में, और उसी के साथ साथ भाई किसी का पिया शायद आज वाकई उनके घर आ रहा हो, तो ठीक है जी हम भी शामिल करते हैं और आते हैं वापस इसके बाद।

0: यस एवरीबॉडी, सो मेरा पिया घर आया, ये आप लोग सब सुन रहे थे. बिल्कुल भाई, ये बड़ा मजा आता है जब भी सुनो. दिस इज रियली नाइस. और ये हम अपनी रील्स पर और इंस्टाग्राम पर तो बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी, जब हर जाने पर हम इसे सुन रहे हैं तो क्यों ना ईद फीस पर भी सुनते हैं, FM 100 पाकिस्तान पर भी इसे सुनते हैं और इंजॉय करते हैं. तो जी, ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर से. क्या बन रहा है आपके लंच में? कहाँ जा रही है आज की सवारी? नानी के घर, मामू के घर, ससुराल, मैके, या क्या सूरत हाल है भाई? हर जाने में एक अलग स्टेटस चल रहा है ईद को मद्देनजर रखते हुए. तो भाई आपका स्टेटस क्या है, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, जरा इस हवाले से भी हम तक आगाही फरहम करें कि क्या है ताजा तरीन सूरत हाल आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए. तो कहाँ जाने का इरादा है, या फिर भाई अब कर लिए हैं बहुत सारे काम और अभी तो फिलहाल सिर्फ आराम का इरादा है? सो जो भी आपका स्टेटस है हमें जरूर बताएं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, की ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक एंड वी आर कमिंग विद ट्रैक.
1: It's 2 p.m. The time check is brought to you by
2: Reno by JazzCash.
3: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी JazzCash app download करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि JazzCash है ना.
5: शराय तो जवाबित लागू है.
6: 100 FM.
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो JazzCash पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय JazzCash.
7: अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
10: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है. वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
11: घर के अफराद और आमदन में तवाजुन
12: हमारी जिम्मेदारी है.
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: FM 100, 31 साल FM 100, आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
15: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: Yes, everybody. So we are back. हम आ चुके हैं वापस. ईद मुबारक आप सबको. और क्या मसरूफियां चल रही है आपकी, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि क्या कर रहे हैं आप लोग. किसी के घर चल रहा है आना जाना या फिर कोई और मसरूफियात का सिलसिला है भाई. और जैसे कि मैंने कहा कि भाई दोपहर में गर्मी बढ़ी है तो बहुत सारे प्लान जो है ना वो लोगों ने कहा कि भाई शाम के बाद करेंगे क्योंकि जरा मौसम ठंडा हो जाए. और आज के दिन ना जिससे भी मुलाकात होगी, यानी कि जब आप गोश्त दे रहे होंगे तो उसी वक्त ना जो प्लान है ना वही भी चल रहा होगा कि बारबेक्यू कब करना है. लेकिन एक जाने में सैड भी हूं लोगों के लिए. और सैड होने के पीछे की वजूहत ये है कि जी हाँ, फ्राइडे यानी कि ईद का तीसरा दिन इज वर्किंग डे. तो बहुत सारी जगहों पर तो ऑफिस वालों ने ऑलरेडी खुद ही छुट्टी दे दी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बदौलत आपका ईद का तीसरा दिन इज वर्किंग, यानी कि छुट्टी का बस एक ही दिन बाकी है. यस, वो है कल का दिन. कल के दिन भी हम आपके साथ मौजूद होंगे 1 से 3 के दरमियान. लेकिन भाई बाकी लोगों के लिए कल जो है ना वो लास्ट छुट्टी का दिन है. और लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जो भी बारबेक्यू का प्लान करना है ना वो ऐसा करेंगे या तो हम सैटरडे संडे ही कर लेंगे. प्लान तो था कि जी बारबेक्यू ईद के तीसरे दिन कर लेंगे, लेकिन बुला लिया है ऑफिस वालों ने. और ये बात रह रहे कि जब लोगों को याद आ रही है ना. अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक रहा है डिस्कशन का जो कि जब भी जो जहां कहीं भी मिल रहा है ना वो ये जिक्र छुट्टी जरूर कर रहा है अपने दुखी दिल के साथ कि यार देखो जरा ईद के तीसरे दिन बुला लिया, यार देखो जरा ईद के तीसरे दिन बुला लिया. तो ये बात तो आपको हर जाने भर किसी की जुबान से बोलते हुए आपको सुनाई दे रहा होगा कि भाई ईद के तीसरे दिन जो है वो वर्किंग है. लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आप जाएंगे और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप 2 दिन की छुट्टी मनाएंगे. तो दिल छोटा नहीं करें, कोई बात नहीं जी. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं. लेकिन अलबत्ता इस वक्त आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बकरा ईद के साथ साथ, बिकॉज अपने जानवर की कुर्बानी और गोश्त को तकसीम करना, साथ ही साथ बारबेक्यू करना, उसी के साथ साथ सिनेमा हॉल जाकर आप जबरदस्त किस्म की जो है वो मूवीज भी देख सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इस वक्त जो है वो लगी हुई हैं, जिसमें जोम्बीड है, फरहान सईद की फिल्म है, अब्बुल्ला है जो के वापस रिलीज की जा रही है, साइको है. बहुत सारी फिल्में हैं जो इस वक्त आपको सिनेमा में देखने को मिल सकती हैं. तो यानी कि एंजॉयमेंट हर तरफ हर जानब है. अभी डिपेंड करता है कि आप कैसे एंजॉय करना चाह रहे हैं. और लो भाई, बातें बातों में भूल गई कि ब्रेक मौजूद है, तो ब्रेक की जानब चलते हैं और ट्रैक के साथ आते हैं वापस.
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने. Schwabe Single Remedies Germany और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद.
3: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया जा रहा है.
4: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
5: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
1: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

Yes, my friend. So I am back. जी हाँ, मैं तो आपके साथ मौजूद ही हूँ एक से तीन के दरमियान, लेकिन ट्रैक्स को भी हम ज्यादा शामिल कर रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है. कलेजी, कबाब, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, कबाबों पर बातों का सिलसिला जारी है. अच्छा भाई, तो क्या है आपके लंच में, हमें जरूर बताएं. लंच में स्लैश ब्रेकफास्ट में स्लैश डिनर में क्या बनाने का इरादा है, ये भी आप हमें बताइएगा. अच्छा, बहुत सारे घरों में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जिनकी कुर्बानी हुई है आज, उनकी कलेजी तो बिलखसूस बनती है शौक से, लेकिन बाकी ज्यादा आइटम्स के बारे में ये प्लान होता है कि चलो जी अब कल बनाएंगे जरा सुकून से, तसल्ली से, या फिर नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके यहाँ बन चुका है कुछ भी मजेदार सा. अच्छा भाई, अगर बात करें हम ईद उल फितर की, यानी कि ईद उल फितर का जो आगाज है वो सुबह सुबह शीर खोरमे के साथ कंपलसरी है कि जी होता ही होता है. तो इस मीठी ईद पर, यानी कि गोश्त वाली ईद पर, आपके यहाँ क्या कोई मीठा बनता है स्पेशल, कोई खीर या शीर या फिर शाही टुकड़े या फिर सिर्फ मिठाई या फिर कुछ और? बिकॉज ईद पर मुंह मीठा कराना तो भाई कंपलसरी होता है, लेकिन इस ईद पर ईद ही नहीं दी जाती, इस ईद पर गोश्त दिया जाता है, इस ईद पर आपको गोश्त दिया भी जाता है और आपको गोश्त खिलाया भी जाता है. तो आपके यहाँ की क्या सूरत हाल है भाई? आप लोगों के यहाँ इस वक्त जो है वो कोई दावत अगर है तो दावत का मेन्यू क्या है, और मैं जरूर जानूंगी आप लोगों से आज भी और कल भी कि दावत के क्या मेन्यू है और मीठे में क्या है. भाई ईद उल फितर पे तो मीठे में शीर होती है, ज्यादातर घरों में यही बनती है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भाई बकरा ईद में क्या कुछ डिफरेंट मीठा बनता है, या फिर वही बनता है या फिर मीठा ही नहीं बनता है. तो क्या बन रहा है आपके यहाँ बकरा ईद पर, हमें जरूर बताएं. और भाई जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएं, क्योंकि वक्त भी तेजी से खत्म हो रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि वक्त खत्म हो जाए और हमारी गुफ्तगू जो है वो आधी अधूरी रह जाए. तो आपके लंच में क्या है आप हमें जरूर बताएं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. सो फॉलो दिस वे एंड बिकम आवर प्रोग्राम पार्ट. तो जल्दी जल्दी बताएं भाई, क्या है आपके लंच में, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, मीठे में क्या बनता है कुछ स्पेशल. अनटिल एंड अनलेस हम चलते हैं एक जबरदस्त से ट्रैक की जानकारी.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: facebook.com/fm247365
5: जी तो हम आ चुके हैं, तो जब हम आ ही चुके हैं तो क्यों ना आप लोगों तक कुछ मालूमात फराहम करें। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। सो व्हाट्स योर प्लान?

यस जी, सो वी आर बैक विद द ट्रैक। रशीद खान हमें एक और मैसेज करते हैं, कहते हैं मीठे में खमामी सेवैया हैं, यस कलेजी खाली है, तिक्का डिनर में है, यस आप भी अपना मीठे का लिस्टर्स को बताएं प्लीज। अच्छा बिल्कुल जरूर, मैं भी बताती हूँ अपने मीठे का। अच्छा हमारे यहाँ चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, दोनों सूरत हाल में शीर ही बनती है। शीर जरा ज्यादा शौक से खाई जाती है, और शीर जैसे खीर हो गई, शाही टुकड़े हो गए, दीगर मीठे हो गए ना, वो शायद आम दिनों में कभी बन भी जाए, लेकिन शीर इज द ओनली वन थिंग जो कि ईद के ईद ही बनती है। तो हमारे यहाँ चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, दोनों सूरत हाल में यही बनता है। अच्छा भाई हमारे पास फिजा का मैसेज आया है। फिजा कहती हैं आप ही गोश्त की चीजें बनना शुरू हो चुकी हैं घर में, वेरी नाइस। हमें अली मैसेज करते हैं, अली कहते हैं रात में तो बिरयानी बनेगी ये तो पक्का पता है हमें। वाह भाई वाह, जबरदस्त हो गया। आज जो बिरयानी बनेगी वो चिकन बिरयानी नहीं होगी बल्कि बीफ या मटन बिरयानी होगी, ये एक चीज है जो आज के दिन होने जा रही है। अच्छा आप ही देखें, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अजहा हो, जो भी मौका हो ना, अब बिरयानी इज द ओनली वन थिंग जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। उसमें अलबत्ता सिर्फ ये तब्दीली आ जाती है चिकन बीफ मटन की, लेकिन बिरयानी एक ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि एक तो आप एक दावत एंजॉय करने जा रहे हैं, चाहे आप घर में हैं तो आपको लगता है कि आप वीकेंड एंजॉय कर रही हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो एक्चुअली में ना एंजॉयमेंट के पीछे जो वजह है ना वो है बिरयानी। बिरयानी खाओ, बिरयानी बनाओ तो लगता है कि जी कोई त्यौहार आप एक्चुअली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस भाई, जबरदस्त हो गया है कि अगर ये कुछ बन रहा है और एंजॉयमेंट का सिलसिला जारी है। हमारे पास एक और मैसेज आया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहते हैं कलेजी तो सुबह ही नाश्ते में खाली है आप ही जी, वेरी नाइस। यानी कि ये कहना सही होगा कि कलेजी का सवाल हुआ है अब पुराना भाई, अब तो बढ़ गए हैं लोग आगे।

यस एवरीबॉडी, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है. आज तो ये कहने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वक्त ऑलरेडी खत्म हो चुका है. प्रोग्राम ईद फीस्ट आप लोगों ने सुना मेरे साथ. इंशाल्लाह कल भी मेरी आपसे मुलाकात होगी 1 से 3 के दरमियान, जिस दौरान आपसे खूब सारी बातें होंगी, आपके ईद का स्टेटस जानेंगे कि भाई क्या है ताजा तरीन सूरत हाल, कहीं हुआ आना जाना या फिर कुछ बन रहा है या कुछ बनाने का इरादा है या क्या सूरत हाल है भाई. कलेजी, पाए, कबाब, बिरयानी या फिर कुछ और स्पेशल बनता है भाई आपके यहां भी ईद के दिनों में, या अभी आज के दिन कुर्बानी नहीं हुई, आज के दिन कसाई अवेलेबल नहीं हुए, तो कल यानी कि ईद के दूसरे दिन आपके यहां कुर्बानी का सिलसिला है, तो जो भी आपकी सूरत हाल है इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे बात मेरी तरफ से और एफएम 100 पाकिस्तान की जानिब से. आप सबको ईद मुबारक. तो जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और साथ ही साथ खूब सारा पानी पिएं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है और उसी के साथ साथ डॉक्टर्स वाली बात हमेशा की तरह कि खाएं सब कुछ मगर एतदाल के साथ. लेकिन सबसे बढ़कर और सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज जो है ना वो उस वक्त ये कि आपने पानी खूब सारा पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो और कोशिश करें कि अगर आप इस वक्त धूप में हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं, तो अपने सर को जरूर कवर करें और पानी पिए ज्यादा से ज्यादा. अनटिल एंड अनलेस टेक केयर, हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. ईद मुबारक.

0: 1FM, your location for maximum music.
1: Welcome back from the break. Meethe mein khimani, khimani, sevaiyan. Yes, kaleji kha li thi. Tikka dinner mein. Yes, aap bhi apna bataein meethe mein kya hai. Meethe mein nahi khate, kya karun? I am diabetic, matlab. क्या कहते हैं शुगर अपने में इतनी ज्यादा चीनी है हम मीठे लोग हैं ना तब क्या ऊपर से मीठा खाएंगे खैर बहुत शुक्रिया आपका नेक्स्ट है फैज साहब उतार के लिए ये क्या आप लिख रहे हैं भाई लिखना इतना जरूरी नहीं है टॉन्ट करना कोई जरूरी नहीं ये जो प्रोग्राम है ना ये FM 1 अरिड ये लंदन में भी सुना जा रहा है कनाडा से और पता नहीं कहां कहां से हमें फोन मुझे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पर और जरूरी है यहां इंग्लिश मुझे आती है और ठीक ठाक आती है तो मैं इंग्लिश में भी बात करता हूं ये पर्शियन आती है मैं पर्शियन में भी बात करता हूं مجھے میکسیکن آتی ہے اسپینش آتی ہے وغیرہ وغیرہ مجھے اردو بھی آتی ہے تو میں اردو میں بھی اور ان ساری زبانوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا FM 100 جو ہے ناٹ اونلی آل اوور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آن دی انٹرنیٹ دیکھی اور سنا جاتا ہے آپ کے میسج کا شکریہ

ये जो सर नसीहतों का चक्कर है, ये डॉक्टर जुबैर फारूक जो बेसिकली मिडल ईस्ट के हैं, यहाँ काफी अर्सा गुजार के गए हैं, उर्दू सीखी, उर्दू में शायरी ऐसी करते हैं कि उनको दुनिया भर में बुलाया जाता है।

और ये जो गजल है ये इन्होंने ही लिखे मुझे भेजी थी और मैंने खुर्रम जमशेद से कंपोज करा के पूरा एल्बम करके इनको दिया है।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
6: FM 247 365. This is your music.

मिठाई की बात कर रहे थे ना। अरे यार ये तो एक जलेबी, हालांकि कुछ जलेबी की तरह होते हैं खवातीन।

वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपको पता है कि हम खुद को सही साबित करने के लिए कितने लोगों को गलत साबित कर देते हैं। पता है आपको ये बात, कुछ नहीं मिलेगा इससे, क्या ही कर लेंगे आप। आप खुद को बार बार सही साबित करके क्या कर लेंगे। अरे कोई पैसा मिल जाएगा क्या, या कोई अवार्ड मिल जाएगा। अगर सही है तो सामने आ जाएगा, फिक्र ना करें। साबित क्या करना है इससे, लेकिन इस अमल में आप बहुत लोगों को गलत साबित कर चुके होते हैं। अगर हमारे अखलाक सिर्फ और अगर हमारे अखलाक सिर्फ अपने ही पसंदीदा लोगों के लिए या जब बड़े लोगों के लिए अच्छा है तो हम खुश अखलाक नहीं बल्कि हम मौका परस्त हैं। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप एक अजीम इंसान हैं। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ हमें बोले बिना हमारी बात समझ जाती थी। मैक्सिमम म्यूजिक जी। हमारी अम्मा हमारे बोले बगैर हमारी बात समझ जाती थी, और हम अक्सर कहते हैं माँ जी आप नहीं समझेंगी। कितनी अजीब बात है। और माँ जैसी हस्ती के लिए हम जितना भी बोलें कम है, अजीब बात है। जब माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता कि आपके सर से छत हट गई है और आप तक ही तन्हा इस दुनिया में हैं। अब लिहाजा बुरे कामों से बचें, झूठ न बोलें, कोशिश करें न बोलें झूठ। अगर इस झूठ से बहुत बड़ा फायदा है किसी और का, किसी की जान बचाई जा सकती है, मुस्तहक की बात कर रहा हूं, तो शायद वह झूठ जो है ना झूठ नहीं रहता। मेरी तरफ से हम तमाम अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूं, और इस दुनिया में और बल्कि सारी दुनियाओं में, कायनातों में जो मखलूक बसते हैं उन सबको भी ईद उल अज़हा मुबारक हो। हमारा आपका साथ आज जो है ना 6 बजे तक है। ये लिस्ट जो है ये गाने की आज नदीम साहब ने तरतीब दी है, बहुत अच्छी लिस्ट है, और वो सुपरवाइज भी करते हैं प्रोग्राम को, हमें गलतियां करने से बचाते हैं।

0: Meet and Mithas by United King. इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें United King के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ United King से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: Public service message.

0: location for maximum music.
1: टाइम मुकम्मल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तफरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बातों से गुरेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो ज्यादा अच्छी बात होती है।

0: money pays Ghana.
1: एक तो मेरी आदत है कि मैं जिद नहीं छोड़ता और एक जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। शुरू से आदत है।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
2: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
1: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
3: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
4: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM247365.
12: This is your music.

0: Your location for maximum music.
1: गाने से बड़ा मजा आता है, बदनामियां साहिर अली बागा एंड फीचरिंग अलीज़े शाह।

0: का प्रोटोट का मैं भी बताऊं कि जब मच्छर है ना, मच्छरों का प्रॉब्लम, जाते ही मच्छर को मार दें, ठीक है, बड़े आराम से अब सोएंगे, इसलिए कि बाकी मच्छर उसकी कफन दफन में मसरूफ हो जाएंगे और आप बड़े आराम से सो जाएंगे।
1: The real station for real people, 100 FM.

0: Your location for maximum music.
1: This is one of my favorite songs that हमारे मेरे सुनने वालों में मेजॉरिटी इस सॉन्ग को बहुत पसंद करते हैं. और लगत आशिकम बॉश मेरी आशिक हो जा.

ये एक और अरबिक सॉन्ग है तो इंग्लिश में ही म्यूजिक में उन्होंने फ्यूजन किया है अलीसा अलीसा असद वाहदक

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात। क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेक।
1: It's 5:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां खार वहां HBL।
2: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी 160 साल से दुनिया भर में शिफा की एक शानदार रिवायत शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 or 5।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खार वहां HBL।
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 or 5।
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: Trust International 0330-153-153-4 or 5.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: ऊपर से हाथ उठाना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
6: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
10: प्लाट बनाए फरो।
11: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
12: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू है।
6: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
1: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
0: एंड
5: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
0: एंड
7: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: एंड
6: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: facebook.com/fm247365
9: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan.
10: Multan, Abbottabad, Gujarat, Kano.
9: Across the nation.
10: This is FM 100.
11: You always get good music with Ayaz Ahmed. If you don't know how to play good music, he will teach you.

साथ साथ कर रहे हैं हमें मैसेज भी 3636 पर। अच्छा जनाब, सबसे पहले संजीदा जी आ गई। संजीदा जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? मजे में? और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम शहजादे, खुश आमदीद और ईद कुर्बा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और कह रही भाई एआई ने कमाल की म्यूजिक दी है। भाई छा गया, एआई छापता चला जा रहा है। और नजर नजर तो क्या गाना थे, और मुझे याद आ रहा है इसकी वीडियो भी सीव्यू पे ही ये शूट हुई थी। शेकी भाई की खूबसूरत सी ड्रेसिंग और साथ में बंदे जो हैं हाथ में रुमाल लेके पानी में डांस करते हुए, दौर था यार, क्या वक्त था। लेकिन ये भी वक्त अच्छा है, ऐसी बात नहीं, सारे वक्त ही अच्छे होते हैं। अच्छा बस अयाज सलाम और सब सुनने वालों को ईद मुबारक। उम्मे रुबाब मालूम हमसे कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मालूम हो गया है रुबाब जी आ गई है और सबको ईद मुबारक कह रही है। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। और संजीता जी ने एक बात कही कि माशाल्लाह इतने कमर्शियल की बहार में आपकी आवाज सुनाई दी, खुश रहे। अच्छा तो ये आज मुझे खुशी हो रही है, बड़े दिनों बाद ये वो वाला टच आया है कि कमर्शियल जो है जिस तरीके से 11-11 मिनट के पहले होते थे वो आज मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। तो ये जो घंटा है वो इसी तरह होगा, कमर्शियल वाला होगा, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि म्यूजिक जो है वो भी मैं आपको सुनाता रहूं। ईद आपकी अच्छी गुजरती रहे। अच्छा जनाब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक बहुत दिनों बाद मुझे नजर आया और अपनी क्यू शीट में मैंने शामिल कर दिया। शारिक रूमी को शामिल करते हैं और उनका ये ट्रैक चंदा मुंह छुपा ले। कभी कभी हम कह देते थे भाई गंदा मुंह छुपा ले, लेकिन ये है असल में ये है चंदा मुंह छुपा ले।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिस्पन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
4: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
5: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू है।
6: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: ए दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: Yellow. एक दो तीन Yellow.
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 अयाज अहमद के साथ, और साथ साथ कर रहे हैं मैसेजेस भी 3636 पर। और जरी नूर कह रही है, सलाम, कैसे हैं आप और ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। उम्मे रुबाब कह रही है, मालूम कहा था आपको नजर ना लगे। ओए होए उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया किसी की भी। और अयाज खुश रहे आप, इतनी सारी दुआएं आपने लिख दी है, बहुत शुक्रिया। उम्मे रुबाब आप भी खुश रहे, ढेरों ढेरों ढेरों ईद मुबारक। बहुत स्वीट है यार, रुबाब जी इतनी सारी दुआएं मुझे देती हैं और एक एनर्जी सी जो है ना वो आ जाती है। इरफान पठान का मैसेज आ गया, ये वो इंडिया के बॉलर तो नहीं, फ्रॉम नॉर्थ नाजमाबाद से। अरे ये यही के अपने वाले इरफान पठान है, फर्स्ट टाइम किसी भी एफएम चैनल पे टेक्स्ट किया। इरफान भाई वेलकम कहते हैं आपको, नेक्स्ट टाइम भी आपने करने मैसेज ताकि पता चले इरफान भाई हमें सुन रहे। अच्छा भाई, और सबको ईद कुर्बा मुबारक। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। अच्छा आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूं, बट नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जावेद अख्तर का सॉन्ग की फरमाइश है, कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। क्या अंकल ने ये गाना गाया है,

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330153153 4 और 5।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में कराची का चित्राल वक्फ कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। फी हिस्सा 24,950 रुपए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330153153 4 और 5।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

जनाब वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। और जनाब जरा लंबी लंबी ब्रेक है तो मैं जरा चाय वाय फुल टाइम गपशप। नदीम अंसारी भाई हमारे साथ है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे मिजाज हैं? देखें यार घर भर छोड़ के आराम से जो है ना ईद यहाँ गुजारते हैं एफएम 100 के साथ। मेहनते देखें आप, मेहनते चेक कर लें, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हम लोग भी तो आ जाते हैं। यार एक पोस्ट मेरे दोस्त ने भेजी मुझे और मुझे बहुत पसंद आई भाई। वो शैतान को ना कंकरियां मारने वाला सीन, उस पे जो है ना वो कह रहा है शैतान का पाकिस्तान को देखकर जवाबी वार, कह रहा है सारा साल यारियां ते हज ते गद्दारियां, हाय हाय क्या बात है, बहुत आला। अच्छा जनाब गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और आपकी पूरी टीम को भी जो है वो सलाम दुआ कह दी है, और कह रहे हैं ईद की बोटियां मुबारक। भाई ये फूड लवर आदमी है, ये खाने से कम कोई बात करता ही नहीं है यार। चले जनाब बहर, और इस वक्त भी कलेजी खा रहे हैं, इसमें क्या करूं, कुछ ना कुछ हर जो पाकिस्तानी है ना खाने में लगा हुआ है किसी ना किसी जगह, बहुत अलग आयास भाई, बस पेट का ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा सुंबल जी आ गई, सुंबल जी क्या हाल है, सबको ईद मुबारक कह दी, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक मजे की चाय जो है ना हमारे सलीम जॉन भाई हमें देखे गए, सलीम भाई के लिए अगर वो सुन रहे हैं भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की चाय है भैया। ईद का दिन है, ईद का गाना शामिल करें, ये तो मस्त है भैया। हाय मिसेस फारूक, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, और ये गाना आप सबको डेडिकेट करने जा रहा हूं मैं।

थोड़ा साथ देना पड़ेगा आपका, मैं ये चाहिए हमें। सलीम मेमन कह रहे हैं, सलाम अयाज भाई, आपको और सब निस्क को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और अयाज भाई, आज आपने खाने में क्या खाया? जरा सी बातें, बकरीद है तो जरा कुछ कलेजियां वलेजियां आती, मुझे जरा इतनी पसंद नहीं, जो सच्ची बात है। तो मैंने कोशिश की जरा कलेजियों से जरा परहेज करूं मैं, लेकिन वो जो आता है मटन यानी बकरे का जो गोश्त होता है, वो जरा मजे का कुछ घर में बना हुआ था, जरा कढ़ाई टाइप की, उससे जरा मजा आया मुझे। पूरी रिपोर्ट बता दी मैंने, पूरी रिपोर्ट बता दी। और अब जो है ना, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा कोई बोटियों वाली चीज खाई जाए। रात का मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ जरा सब्जी वब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज हो, या कुछ चाइनीज जाके खा लू मैं। हाय, चिकन चिली ड्राई याद आ गया मुझे, वो भी बड़ा कुछ ना समझ में आया, तो आप ये जाके खा लेते हैं। बिलावल गिजरी से, आज भाई आपको, सुमल जी को और एफएम मंडल के तमाम प्यारे लिसनर्स को दिल की गहराइयों से ईद। दिल की गहराई जो है ना, आज बहुत चल रही है, पीटीवी का दौर भी याद आया, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा सुंबल जी ने भाई, नदीम भाई आपको ईद मुबारक कह दी, और उनकी जानिब से बहुत शुक्रिया सलाम के साथ। अच्छा जनाब, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करें, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, और एंजॉय करें इस खूबसूरत म्यूजिक को।

right, जनाब वेलकम बैक, सुन रहे एफएम वन. अच्छा वैसे मसरूफियत चल रही है, फुल टाइम फोन आ रहे हैं बाहर से भी, घर से भी और हर तरीके से. सुबल जी कह रही भाई कल का बहुत शुक्रिया आपने जो है वो नदीम भाई के साथ जो है बैठ के तो शो किया, या कहां 5-10 मिनट शो किया, उसको शो तो नहीं कहते, लेकिन ये है कि कसम पूरी कर ली, कसम खा सकता हूं हां हमने कंबाइन शो किया था, लेकिन फैमिली को भी टाइम देना पड़ जाता. घर वाले बोलते हैं हर वक्त एफएम 100 पे, ऐसा तो नहीं, कभी कभी तो कहते हैं भाई हमें फोन करना पड़ता है एफएम के, भाई वहां से बुला दे आयाज को. ये हालात चल रहे हैं, मोहब्बत है दोस्तों आप लोगों से. अच्छा जनाब बहुत कमर्शियल भी जो है वो सुनाई दे रहे हैं आपको, और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूं क्योंकि आराम से मैं चाय वाय फुल माहौल यहां पे फुल तफरी वाला हो रहा है. आपका मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन 5-5, 10-10, 11-11 मिनट की ब्रेक तो काफी टाइम मिल रहा है घूमने फिरने का. क्यू शीट वैसे की वैसी पड़ी हुई है, जो मैं गाने लेके आया हूं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं, उनको मैं संभाल के रखा हुआ मैं. चलिए जनाब टाइम भी टाइम चेक है और इसके बाद कोई 10 मिनट की ब्रेक और है. सुनते रहे FM 100 अयाज अहमद के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद.

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 021-111-022-022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।

0: अगर आप है ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस के सिलसिले भी जारी हैं। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं सर इतनी ब्रेक्स हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि ये ई ट्रांसमिशन है। भाई ईद अब जाके लगी है मुझे तो ई ट्रांसमिशन है ये, क्योंकि हर ईद पर इसी तरह ब्रेक्स आती है और बेतहाशा ब्रेक। जनाब इसके अलावा आयशा कहनी अस्सलाम वालेकुम, अयास भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। भाई जी गाने भी सुनाने हैं और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस जो कि अब जरा कम कम आ रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक ज्यादा है इस वजह से जरा मैसेज कम है, तो मैं इस पे बिल्कुल माइंड भी नहीं कर रहा, ये तो सिलसिला है जाहिर सी बात है। लेकिन ईद मुबारकों के मैसेज पहुंचे हुए, अनवर भाई ने सबको ईद मुबारक कह दी। अनवर भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और निदा जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी नेक्स्ट ट्रैक की जानिब,

0: One.
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाब लागू है।

0: Yellow. एक दो तीन Yellow.
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
2: एक्टिव यमी डॉरबल जबरदस्त. ये प्यास तो सुनो याद.
3: आज जनाब ये पहली ब्रेक थी जो जरा छोटी थी. अच्छा जनाब बहुत बहुत सारे लोग जो है जरा शिकवे शिकायतें कर रहे हैं. भाई मैं क्या ईद के दिन है तो इसमें थोड़ा सा माफी दे दें हमें आप. और शुक्र है कि ब्रेक सारी है और वो पुराने जैसा माहौल जैसे एक क्रेज होता था FM 100 का वो आज फीलिंग दे रहा है तो अच्छा भी लग रहा है. सच्ची बात बताऊं और ये संजीदा ने भी ये बात कही कि कमर्शियल भी इस शो की अहमियत को बढ़ा रहे हैं. भाई बड़ी आला बात कर दी आपने भाई. बहुत अच्छी बात किया. अच्छा जी आपका शो सुनते सुनते मेरी बिरयानी भी बन गई शो. नाइस खुश रहे जरीनूर. क्या बात है बिरयानी बन रही है फुल टाइम साथ में और लवाजमात भी. वैसे खाली बिरयानी भी मजा नहीं देती साथ में जरा एक फ्रूट सैलेड होती है वो भी अगर साथ में हो जाए साथ में अगर रायता भी हो जाए और साथ में अगर जरा कोक या पेप्सी शेप्सी टाइप की चीज या वो लेमन वाली लाइम वाटर कहते हैं. और आप दुकान में जाते हैं इतने पैसे लगा देते हैं लाइम वाटर के. अब एक नींबू मंगाओ 7 अप मंगाओ और थोड़ा सा नमक डाल दो तो ये अक्सर वालों के पास बहुत पैसे होते हैं तो वो कहते हैं अब भाई प्लीज लाइम सोडा या इस तरह की चीज तो वो वेट था जब मुंह खोल के पैसे जो लगा दो तो खुद बना लो यार. इसमें कौन सी जरा समझदारी भी होनी चाहिए. लेकिन ये कि बाज लोगों को दिखा रहे थे बहुत पैसा यार फिक्र नहीं कौन ने छोड़े नींबू. चले जनाब जरी लोग एंजॉय करना है फुल टाइम. मजे का डिनर मुझे लग रहा है कि होने वाला. और इसके अलावा मिसेस फारूक कार में हमें सुन रही है. अरे सरकार क्या बात कहां जा रही है. चले जनाब जहां भी जाए खैरियत से जाए. आप यार एक इतने फास्ट गाने सुना रहा हूं. एक ऐसा उस दिन मैंने ये प्ले किया तो लोगों ने काफी पसंद किया इसको. खूबसूरत सा शेर भी है और इसके अलावा एक खूबसूरत सा जो है ना वो एक गाना है वो भी जरा कुछ कुछ लाइनें हैं जरा सुने आप.
4: जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं. जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं.

समझ ना सुन रहे FM 100 क्या कहने, आज भी सुने तो ये गाने अच्छे लगते हैं। और सलीम मेमन कह रहे हैं जरी नूर जी ने तो बता दिया कि बिरयानी का संजीदा से आपने पूछना है कि आज क्या पकाया है। भूखे आदमी हर एक से पूछते रहते हो घर में क्या बना हुआ, कुछ ना कुछ बनाया होगा यार सलीम भाई। लेकिन चले सलीम भाई ने पूछ लिया तो संजीदा जी बता दीजिए क्या बना रही है। अच्छा जनाब सॉन्ग्स और भी मौजूद हैं और जरा मिक्स माहौल है। टेलर स्विफ्ट भी नजर आ रही है यार, थोड़ा जरा इंग्लिश तड़का भी हो जाए, क्या ख्याल है? थोड़ा सा सुनाते हैं, मैसेज करें कि चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। एक दफा फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।

भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे एफएम 100 और संजीदा जी ने पूरा मेन्यू कार्ड जो है वो रख दिया है। कहनी सुबह कलेजी मसाला, दोपहर में यखनी पुलाव, हाय हाय, शामी कबाब सलाद रायता, मीठे में शाही टुकड़े। अरे ये भी तो मीठा था किसी दौर में, ये तो मैं भूल ही गया यार। जी कहीं बाहर से मिलते क्या? घर वालों को तो बनाने नहीं आ रहा यार। बड़े मजे के होते थे, जब रोटी बच जाती थी लोग इसी का मीठा बना लेते थे। और मेहमानों का नाश्ता अलग, वाह वाह वाह, 5-star होटल लगा फुल टाइम। खुश रहे आप, खुश रहे आप। अच्छा जनाब, कबाब भी हैं और सैलेड रायता और कोल्ड ड्रिंक भी है लेमन वाली। जरीन नूर मजे है, फुल टाइम पिकनिक मना रही हो दुनिया में, फुल टाइम पिकनिक मना रही है जरीन नूर। मिसेस फारूक खुश रहे आप। अच्छा जनाब, माहौल जरा बना हुआ है, अच्छे अच्छे गाने सुनाने का, तो ये एक ट्रैक और मैं आपको सुनाता हूँ।

जनाब सुन रहे हैं 100 और साथ साथ क्या बात कर दी, वाह वाह वाह वाह संजीदा जी बहुत आला। कह रही है भाई सॉन्ग इस तरह के नहीं है लकीर के फकीर हों, और ये जो चेंज आपने दिया है इनको पसंद आ रहा है भैया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और बाकी यार चेंज जरूरी है, अगर एक मोनोटनस रह जाए ना आपको जहर लगने लग जाता, चैनल भी बुरा लगने लग जाता। हर तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए और बहुत आला बाकी मिसालें दी इन्होंने, बिल्कुल सही बात किया आपने। अच्छा यही गाने अगर नए स्टाइल में हो तो और भी अच्छे लगते हैं आपको। क्या यार ये भी स्टाइल है गाने का, बॉब मार्ले मुझे याद आते हैं। और किसी दौर में ये बहुत मैं सुना करता था। बहरहाल जनाब थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में मैंने रख दिया इसको। अच्छा जनाब एक और जबरदस्त ट्रैक आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़े दिनों बाद क्यू शीट में शामिल।

भाई जनाब सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ। देखते देखते टाइम जो है वो जरा एंड की तरफ जा रहा है। करीम बलोच कह रहे हैं अयाज भाई सलीम मेमन के घर में खाना नहीं बनता क्या? अरे सलीम भाई ने ऐसे प्यार से पूछ लिया कि भाई क्या पका हुआ, अमूमन पूछ लेते हैं लोग, ए बहन घर में क्या पका हुआ है जरा। ये वो संसक करीम भाई दिल पे ले लिया आपने, पूछ लेता बंदा वैसे ही पूछ लेता करीम भाई आपके घर में क्या पका हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे घर में कुछ नहीं पका। ऐसा एक होता जरा पता चले भाई मेन्यू शेन्यू क्या है ताकि नेक्स्ट टाइम हम भी वो बना सके। अच्छा जनाब टाइम चेक है और 5 मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: पाकिस्तान
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: लाड बनाए फरो
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: शरायत जवाबित लागू है
7: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर और सिर्फ यही नहीं इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी जायके की रवानी हमारे साथ रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 021-111-022-022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।

अब देखते देखते मैंने कहा ना कि टाइम अपने अख्ताम को पहुंच गया। तो भैया एक दफा फिर एफएम मंडेट की जानिब से, अयाज अहमद की जानिब से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का पहला दिन यकीनन मजे का गुजर रहा होगा, अच्छा गुजर रहा होगा। जिनका अच्छा नहीं गुजर रहा कोई बात नहीं, अच्छा बनाने की कोशिश करो यार। और दोस्तों कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक। सॉन्ग्स अच्छे हैं आपके शो के। जरीनूर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते ये ट्रैक मेरी तरफ से आप सब दोस्तों के लिए। अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

0: Yellow. एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत। तवज्जो फरमाएं, एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
8: FM247365

0: FM 100's time check. It's 9 PM. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
12: FM247365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: वेलकम बैक मिंढा रांझणा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको आया होगा पसंद। और इस वक्त ईद का पहला दिन और पहला दिन आप गुजार चुके हैं, कैसा गुजरा आपका ईद का पहला दिन? यार ईद के पहले दिन जो स्पेशली मेहनत, अगर ये कहें कि जी खवातीन ज्यादा मेहनत करती हैं तो गलत ना होगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मर्द हजरात ज्यादा मेहनत नहीं करते, ये भी गलत ना होगा। दोनों की मेहनत बराबर होती है, लेकिन मर्द हजरात की मेहनत जो है वो मुशक्कत वाली होती है। एक तो पूरी रात जागना, जानवर का ख्याल रखना, फिर उसके बाद कुर्बानी, और उसमें कसाई के साथ जो है बहसो मुबाहिसा, क्योंकि आपको पता है कि दर्जी हो, पलंबर हो, वेल्डर हो, चौकीदार हो, ये तमाम लोग आज के दिन कसाई बने होते हैं। तो आपके जानवर का जो हाल होता है वो आपको भी नहीं पता होता, लेकिन खैर जो कसाब हैं बहुत जबरदस्त अच्छे, वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। और नदीम भाई, मैंने तो सुना है कि भाई 10,000-15,000 रुपए बकरे के, और 40-40-50-50,000 रुपए गाय के। हाँ बिल्कुल जनाब, अभी जाएंगे एक अदद ब्रेक की जाने।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: आसानी से पैसे बढ़ाओ with Easy Paisa Digital Bank. Easy वाला बैंक।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 24/7/365

वेलकम बैक कहेंगे सुनो। बात पता नहीं क्या कर रहा था मैं, छोड़ो भाई, हम आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं और देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ। भाई जन अयूब अफरीदी जाने जिगर या हबीबी, सबसे पहले पीता काटा है। वो कह रहे हैं आपको और तमाम सुनने वालों को ईद कुर्बान मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे अयूब लाला, दिल के अलावा और क्या क्या कुर्बान कर चुके हैं बताइए जरा। आसिफ साहब कह रहे हैं इन्हें सुनियो आपको और तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम नदीम सलाम आपको हमेशा सलाम सलामत रखे, आपको और सब सुनने वालों को ईद मुबारक मालूम मेरे। मेरा ध्यान आपके साथ है, मेरा ख्याल ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, बहुत सलाम दिया और कहा है कि खूब सलामत रहो एंड लव यू, लव यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तिनाले टेन। ये हैं हाय एलर्जी उम्र बाप। और लाला कह रहे हैं कि माहीन और शेर बानो को निगत को ईद उल अबहा मुबारक हो, खैर मुबारक। और कैसे हैं और वाले साहब को और संजू को और चाची को और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक आए हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर ने। और कह रही है आज मटन बिरयानी कबाब और रस मलाई के साथ ईद मनाई। हाय अल्लाह जी, अच्छी ईद गुजर रही है। जरीन नूर कह रही है वाह भाई वाह, चले इनकी बात से मेरे मुंह में पानी तो खैर आ ही गया। मैं ये भी कहूंगा कि क्या क्या आज फोड़ा कलेजी के अलावा, वो तो हर घर में बनती है। मुश्की भी आ गई है आज तो, जल्दी जल्दी करिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आज का गर्म दिन, दिल चाहने लगा अभी बारबेक्यू कर ले। कैसी गुजरी ईद कुर्बान, बर्गर का नाम अच्छा है, मुझे बर्गर तो जानू याद आता है, बस जानू बर्गर वाला उसी की बात करेंगे क्योंकि जानू का नाम अच्छा है। हाय अल्लाह जी, वैसे आज मैंने जानू का बर्गर खाया, आपको हैरत हो रही होगी, लोग जो है वो कढ़ाइयां खा रहे हैं, मटन बिरयानी खा रहे हैं, मटन कोरमा खा रहे हैं, बीफ कोरमा खा रहे हैं, कलेजियां खा रहे हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ जानू का बर्गर खाया। यानी कि समझ रहे हैं ना, नहीं समझेंगे। पूरा हर जाई है गलियों से गुजरता है, कभी छत से बजाता है बजाता हुआ सीटी, रोज आता है जगाता है भूत लोगों को शब भर। आज की रात उफक से कोई चांद निकले तो गिरफ्तार ही कर लो, सर से गुजर गया मुश्किल है मेरा। अच्छा आपको एक आज निक दूंगा मैं, निक नेम जिसको कहते हैं, नट नाउ थोड़ी देर बाद। अरे फातिमा नूर कैसी हो, करिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ईद उल अज़हा मुबारक और सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। और फरीन शहजादी भी आ गई हैं और वो भी ईद मुबारक कह रही हैं, खैर मुबारक खैर मुबारक। अब्बासी अलबेला मेहरान टाउन से, मुझे याद हो गया। नदीम भाई मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को, आपके बकरे को, आप बकरा मेरा कोई बकरा नहीं को, आपकी बाइक को, आपके फोन को, आपके एलईडी को और जिस को देखते हो चौकीदार की तरफ से 2026 की ईद उल अज़हा होने वाली मुबारक हो। एलो फड़ो मैसेज पकड़ो भाई अब्बासी अलबेले, हाय हाय मुझे याद, गाना तुम्हारे पर आ गया, तुम्हें गाना डेडिकेट करूंगा वही वाला। सबको सलाम एंड अफसोस आप कल, अरे हाँ जाते हुए सलाम कहना भूल गया था, खैर जी कोई गल नहीं। शाहिद साहब हैं हमारे, मेरा ख्याल है लुकमान साहब, हम लुकमान लिखा करें, मुझे बड़ा पसंद है आपका नाम। और तामीर अली आ गए हैं और छोटी सी हमारी अनाया भी आ गई है, कहिए नदीम भाई हमने आज कीमा कोफ्ता खाया। अरे वाह भाई वाह, और आपने क्या खाया नदीम भाई, बता तो रहा हूँ जानू का बर्गर खाया
लेकिन मैं जब घर जाऊंगा तो मटन बिरयानी स्पेशल होती है हमारी, तो वो मतलब जाके फोड़ेंगे, बट नॉट नाउ। तो आप लोग जो जो बता रहे हैं मुंह से पानी आ रहा है जी, तो हैं जी। तो भाई मुश्की का भी मैसेज आया है, और उसका मैसेज जो मैंने बीच में एक लफ्ज खा गया। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, किस नाम से पुकारूं, क्या हाल है आज का दिन, दिल आज का गर्म दिन, दिल चाहने लगा अभी बारबेक्यू हो जाए। तो इनका जो पहला जुमला था किस नाम से पुकारूं, तो वो गाना भी आपको डेडिकेट करते हैं कि किस नाम से पुकारूं, तो ये मुश्की आपके लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक। किस नाम से पुकारूंगी यार, नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम है मोश, निकनेम मोश। हाय मोश, हाउ आर यू? मुशी कहेंगे, मुशी है भाई। आपको अच्छा लगा तो बताइए हम, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं पुकारेंगे। अच्छा जनाब कामरान साहब आ गए, कह रहे नदीम भाई आपको और सब को सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक कामरान भाई, कैसे हैं आप? मुशी कह रही है कि अकेले अकेले खा लिए जानू बर्गर, आ जाएं आप, हम आपको खिलाएंगे, वादा रहा आपसे। हैं जी, ते हैं जी। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौजी फैसलाबाद से आ गई, कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश खिदमत है और तमाम हसीन तरीन समातों को भी सलाम और ईद उल अजहा की मुबारकबाद। खैर मुबारक, जी जी रहे, मुस्कुरा दी रहे। जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।

0: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
1: नई स्कीम
2: कमिटी
3: लाड बनाए फरो
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: शरायत जवाबित लागू है
7: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर और सिर्फ यही नहीं इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी जायके की रवानी हमारे साथ रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना
9: शराय तो जवाबित लागू है

0: मौला अली आप गो मालूम, बिल्कुल मालूम, और सलामत रहे सेहत के साथ जिंदगी के साथ, आमीन शुम आमीन। आपको भी ढेर सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए और खुशियां अता फरमाए, यानी कि समझ रही है ना। हाँ, टंडो मोहम्मद खान सलाम, ईद मुबारक। उजैल अली, अलीजा अली और जीशा अली और अंशाली, ये सब सुन रहे होंगे भाई हमें। उजैल अलीजा जीशा और अंशा, आप लोगों को वेलकम कहेंगे, गाना भी डेडिकेट करेंगे। भाई अली खान, तुम कौन कौन सी रोडों पर रहते हो भाई? अभी तुम्हारा मैसेज आया खयाबाने शहर से, और अब मैसेज आया है नदीम भाई खयाबाने मुजाहिद से चेंज हो के अब खयाबाने शहर में हूं। नो प्रॉब्लम। हाँ, मुझे अब याद आ गया यार, खयाबाने मुजाहिद में मैंने बोला था मैं तो रोज ही जाता हूँ, अब तुम शहर चले गए हो। चलो, शहर दूर नहीं है वहां से, लेकिन खैर क्या करें जनाब, नौकरी तो नौकरी है, नौकरी की है तो नखरा की है जी, ते हैं जी। और अब्बासी अलबिला, अरे अब्बासी अलबिला, हाँ मैम, मेरा ख्याल है आप लोगों के नाम साथ साथ जो है मैं नोट करता हूँ, ठीक है ना। तो अब्बासी भाई, और उसके साथ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना इकरा, इन्होंने ही अभी तक जो है वो गाने शाने का गाया है ना। मुश्क को तो हमने ट्रैक डेडिकेट कर दिया है, और हमारे अयूब लाला ने, वो तो हमेशा जो है गाना तो उनके लिए चलता ही है ना जनाब जी भी, इनको वैसे कभी गोश वोश भेजा इनको? जिंदगी के सारे महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग सिखाते हैं, धोखेबाज फरेबी लोग। हाय हाय, अयूब आफरीदी भाई क्या बात लिखते हैं, समझिएगा, जिंदगी के सारे महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग सिखाते हैं, धोखेबाज फरेबी लोग। औकात से ज्यादा मिल जाना पूरी बात बुरी बात, या पूरी बात लिखा हुआ बुरी बात नहीं है, औकात से ज्यादा मिल जाना बुरी बात नहीं है, पर मिलने के बाद औकात भूल जाना बुरी बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, यही देखने में आया है, जो नस्ली होता है वो जो है अपनी औकात नहीं भूलता, ये फैक्ट है। अल्लाह ताला अता फरमाता है, सबको अता फरमाता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, किसी को किसी का जर्फ देखना है ना, ये मौला अली का कॉल है, किसी का अगर आपने जर्फ देखना है तो उसको इज्जत दो, यानी कि दूसरा जुमला मैं भी बोलूंगा नहीं। वाह वाह वाह वाह, खुल के सामने आ जाएगा आपके भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो जनाब नहीं, अभी मैसेज ही पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद फिर आपको गाना सुनाएंगे। तामीर कह रहे हैं कि छोटी अनाया के साथ छोटी भांजी दुआ भी आपका शो सुन रही है। अरे वाह भाई वाह, आज तो बच्चा पार्टी फुल टाइम सुन रहे हैं भाई, ये तो बड़ी मजेदार किस्म की बात है। बच्चा पार्टी को कौन सा गाना सुनना है, पाकिस्तानी गाना बताना, और अनाया और दुआ लव यू, और उसके साथ साथ उजैल और अंशा ये सब भी सुन रहे हैं, बच्चा पार्टी ज्यादा सुन रही है भाई, दैट्स ग्रेट यार। खैर जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बच्चा पार्टी को एक ट्रैक डेडिकेट करेंगे, हैं जी। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक।
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: 100 FM।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट।

0: शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
0: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM247365

Welcome back. तो जनाब अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने पर, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे प्यारी सी अनाया को, दुआ को, अंशा को और भी नाम थे, उजैल को, अरीजा को, जिशा को और जितनी बच्चा पार्टी इस वक्त सुन रही है उन सबको हेलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको जरा सी लगा लो ब्यूटीफुल ट्रैक। और ये ट्रैक अगर बच्चों को नहीं पसंद आया तो बच्चों को हम और भी ट्रैक्स डेडिकेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे कोई भी नया गाना चलेगा तो हम प्यारे प्यारे से बच्चा पार्टी को डेडिकेट करेंगे। बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानब। और अच्छा जी ये आ गया। नदीम भाई अल्लाह तुम्हें दो परियों वाली हर मखलूक की बुरी नजर से, दो पैरों वाली अल्लाह आपको तुमको हर दो पैरों वाली मखलूक की बुरी नजर से बचाए। आमीन सुबह आमीन। कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, कब तक हजम नहीं करो। कोल्ड ड्रिंक भी पीनी चाहिए जब तक हजम ना करो। आपका अलबेला भाई सिक्योरिटी में है। अलबेला भाई हमें पता है आपके लिए हमने गाना भी चलाना है, पक्का पक्का गाना चलाया गया, डोंट वरी, हो सके ये सॉन्ग चलाएं। क्या लिखा हुआ, गाओ आओ जी आओ जी, अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है साथ में, नाम ना नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये गाना समझ में नहीं आया। गा आव गा आव गी, पता नहीं ये समझ में नहीं आ रही है गाना भाई कौन सा है, थोड़ा सा और बेहतर कीजिए। और जिंदगी आ गए हैं भाई, जिंदगी आ गई तो जिंदगी तो जिंदगी है, यानी जिंदगी साथ है। नदीम जी के कैसे हैं, और सुन रही हूँ सिर्फ आप की आवाज बस।

0: गाने क्यों नहीं सुन रही हो जिंदगी? अगर मैंने डेडिकेट कर दिया तो तब भी नहीं सुनोगी गाने? बताओ। हमारे अयूब लाला के बड़े प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे जिंदगी के सारे महंगे सबक सस्ते लोग सिखाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। और कह रहे ईदे कुर्मा पर सिर्फ जानवरों की ही कुर्बानी ना करें, बल्कि अपनी अना, हसद और तकब्बुर को भी कुर्बान करें। दिलों में पड़ी नफरतों को भी खत्म करो, क्योंकि यही असल कुर्बानी है। जिगर मुश्की को अंबर का नाम दो। अंबर जो हमारी एक और बहुत प्यारी सी आरजे हैं, मुश्की को हमने मुश्क का नाम दे दिया है। एक मुकम्मल जिंदगी खराब कर दी जी बी एन, तेरे अधूरे इश्क ने। उफ, क्या जुमला, जबरदस्त। अच्छा, आपकी एक बात पर ना अयूब लाला मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आपने ये जो बड़ा खतरनाक किस्म का जुमला लिखा कि ईद पर सिर्फ जानवर ही नहीं कुर्बान करने चाहिए, अपनी अना, हसद, तकब्बुर को भी कुर्बान करना चाहिए और दिलों में पड़ी नफरतों को भी खत्म करना चाहिए, असल कुर्बानी यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, यकीन मानिए, लोग जो है वो अपने तकब्बर को, अपने अना को, अपने हसद को इतना पाल पोस कर जवान कर रहे हैं कि क्या बात है। और वो पाल पोस कर उसको खिला पिला रहे हैं इतना कुछ कि वो इतना तगड़ा हो गया है कि जब भी अपने जहन में, दिल में कोई उमंग या तरंग उठती है ना, सिला रहमी की या अल्लाह के आगे झुकने की या दूसरों के ख्याल की, तो वो हसद, अना, तकब्बुर जो है ना, वो उसको फौरन उसके मुंह पर पांव रख देता है। और ये सिलसिलाकार चल रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो कि मैंने देखे हैं अपने इस जिंदगी में, इस ईद पर भी देखा है कि सगा भाई सगे भाई से नहीं मिल रहा, ना बात कर रहा है, ना सलाम का जवाब दे रहा है, ना सलाम कर रहा है, ना मिल रहा है। तो गोश्त और कुर्बानी तो दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। तो ऐसे में ये बड़ी प्यारी बात की है आपने कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके साथ कुर्बानी थोड़ी सी अपनी अना की भी कीजिए, अपने हसद की भी कीजिए, अपने तकब्बुर की भी कीजिए, तो जिंदगी यकीन मानिए सिर्फ यहीं इस दुनिया में हसीन नहीं होगी, आपकी आखिरत भी जो है वो भी खूबसूरत और हसीन हो जाएगी। और मुश्क कह रही हैं, हमारे यहां काली कटी हुई मिर्च का मटन स्टू बनता है। ओए होए होए होए, दम पर हरी मिर्चें शामिल करते हैं। कैसे दम करती हैं उस पर? रेसिपी नहीं मालूम, चपाती साथ होती है भाई, बहुत आला। अच्छा सॉन्ग था बच्चा पार्टी का और मूड माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। किसी से मिलकर आए, मुझसे से तो नहीं मिले। यकीन मानो मैं जब खाली पेट होता हूँ, परेशान होता हूँ तो ज्यादा खुश होता हूँ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और फातिमा नूर कह रही हैं कि ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। वाह वाह वाह वाह, ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई फातिमा नूर। ओके ठीक, ये शेर तो जो है ये पक्का पक्का अयूब आफरीदी पर बैठता है। तो अयूब आफरीदी कहते हैं कि ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इसी बात पर जाएंगे एक ब्रेक की जाने।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 10 PM। पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है। मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: FM 24/7 365 FM 100
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

वेलकम बैक। अच्छा भाई, हम फातिमा नूर के मैसेज की जानिब थे और बहुत जबरदस्त सा उन्होंने ईद के हवाले से शेयर भेजा, आप भी भेज सकते हैं भाई हबीबी। अच्छा जी, मौला अली के कॉल भी भेजा है, जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो क्योंकि इंसान के गुनाह उसे बेचैन रखते हैं। वो फल्ला। अच्छा मौला अली की इस कॉल से मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा अता फरमाया दौलत के हवाले से कि माल काफी है, दौलत काफी है, मगर उनके पास बेसुकूनी, बेचैनी है। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और नौरीन क्या कह रही हैं? अरे भाई, मैंने रेसिपी के हवाले से बताया कि कोई स्पेशल ऐसी डिश, तो उन्होंने बताया नवाबी रेशमी बोटी। हाँ जी, ये एक शाही और नायाब बारबेक्यू डिश है जो खास तौर पर ईद और दावतों में बहुत पसंद की जाती है। और ये बनती कैसे जनाब, इन्होंने बताया भी है। छोटे गोश्त के नरम टुकड़ों में दही, क्रीम, पनीर, अदरक, लहसुन, सफेद मिर्च कौन सी होती है, और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करें। अच्छा जी, एक बार फिर बता रहा हूँ कि छोटे गोश्त के नरम टुकड़ों में, छोटे गोश्त से क्या मुराद है, मतलब बकरे का गोश्त, मटन की बात कर रही हैं आप, छोटा बड़ा गोश्त क्या होता है मेरे ख्याल में मटन की बात कर रही हैं। तो छोटे गोश्त के नरम टुकड़ों में दही, क्रीम, पनीर, अदरक, लहसुन, सफेद मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करें। 2 घंटे तक उसको मैरिनेट करें। सीखों में लगाकर कोयलों पर हल्की आंच में बारबेक्यू करें। ऊपर मक्खन लगाकर धुआं दें। वाह वाह वाह वाह वाह, मुलायम, रसीली और शाही जायके वाली ये डिश नान और चटनी के साथ। हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। तो भाई, एक डिश तो आ गई और मैंने भी आपको एक डिश बतानी है। जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे और उसे सच बताया जा सके। वाह भाई नौरीन, जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे और उसे सच बताया जा सके। हाय हाय, ईद का दिन है, सब मिलेंगे आपस में। शेर भी आया भाई इधर से। ईद का दिन है, सब मिलेंगे आपस में, हम किससे मिलेंगे, तुम आ जाओ तो ईद हो जाए। वाह वाह वाह वाह, चांद को देखकर लोग मांगते हैं दुआएं, हम तो तुमको मांगेंगे, तुम आ जाओ तो ईद हो जाए। क्या बात है भाई, अहमद फराज साहब का भेजा है। अच्छा, मेरे वालिद साहब का एक ट्रैक है जावेद अख्तर साहब का, तो उनके उस ट्रैक में ईद के हवाले से भी है कि सबसे हुए वो सीना बसीना, मुझसे मिलाया खाली हाथ। सबसे हुए वो सीना बसीना, मुझसे मिलाया खाली हाथ, ईद के दिन तुम सच पूछो तो ईद मनाई लोगों ने। और मेरा ख्याल है गाने की जानिब जाना चाहिए। और अब ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं अब्बासी अलबेला साहब को, जो कि चौकीदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या हैं ये मुझे नहीं पता भाई। तो अब्बासी अलबेला साहब, क्योंकि आपके नाम के साथ आता है अलबेला, तो आपको ये हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक। कभी तो मुझसे इकरार करना, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आया होगा। इकरार ने थैंक यू भी कह दिया, अरे क्या बात है, बच्चा थैंक यू नहीं करते, गाना चल जाता है।
1: हाय अल्लाह जी
0: बोल देते हैं,
1: हैं जी ते हैं जी ये बोल देते हैं।
0: और जनाब नदीम भाई, कल रात आपने मेरा नाम गलत लिया था, मेरा नाम गुलाम सरवर है, मसरूर नहीं है, प्लीज भाई ये गाना सुनवा दे। गुलाम सरवर साहब गलती हो गई होगी, माजरत। संजू कहाँ है, कोई भी सॉन्ग संजू के नाम, जरीन नूर संजू आ गए हैं, भरपूर तरीके से आ गई हैं। ये सॉन्ग का नाम है, ये सॉन्ग का नाम है अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आओ जी, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। और रोकड़ी दा ना, रोकड़ी दा गाना है, चला देंगे। और अयूब अफरीदी कहने बिल्कुल ठीक पड़ा आपने, दासियों का ना, इसका मतलब है यार मेरा पख्तूनच्चा होता है। ओकलम, ओकलम का क्या मतलब है? और सुने हो, आज बैलेंस खत्म हो गया था, अभी डलवा के आया हूँ आपको और सब प्यारे प्यारे लिसनर्स को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। सलीम मेहमान भाई, पैसे कैसे खत्म हो गए यार? आज तो आपने कितने बकरे गिराए और कितनी गाय गिराई, और मैंने तो सुना है कि मुंह मांगे पैसे मांगे आपने यानी कि समझ रहे हैं ना आप।
1: बताइएगा, जरूर बताइएगा मेरे को, संजू क्या कह रही है? संजू भी कुछ कह रही।
0: ओहो संजू, इतने जबरदस्त लंबा चौड़ा मैसेज है भाई ये तो, ये कोई मेरा ख्याल है। हाँ, और कह रही है समझ रही हूँ। और नदीम अंसारी भैया को आफियत की दुआएं कह दीजिएगा, अंसारी साहब जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। कभी तुम मुझसे इकरार करना, जबरदस्त सॉन्ग है। संजू आपको पसंद आया? गुड है यार, चलाएंगे बड़े आपके लिए। कहती है कि मैं बैठे बैठे उठी और ना गहा नाची, जो नाचते मुझे देखा तो लामका नाचा, वो रक्स खास के इजाद कर चुकी थी मैं, लगा के आग मैं खुद उसके दरमियान नाची, मैं नाचते हुए कैसे हिसाब रख सकती, कहां ज्यादा कहां कम कहां कहां नाची, न जाने कौन सी हस्ती की दिल में मस्ती थी, दिखा दिखा के बदन का जवां जवां नाची, न जाने क्या था मेरे सुर में इस तरह रक्सां, सरे आस्तां पे झुकाया तो आस्तां नाचा, किनारे ख्वाब भी खस्ता मुढ़ेर हो जैसे फिसल गई तो ये जाना के रायगा नाची, फल आंसुओं के लगे मेरे नखले गिरियां पर, फलों को देखा छुआ और बागबां नाचा, लुगत में अपनी जगह आप ही बनाऊंगी मैं एक बार जो नाकाबिले बयां नाची, ये जाना ये जान निकलना आसान तो नहीं साहब, बुझा के शोला मेरी रूह का धुआं नाचा। ये मैंने इंतखाब जो पढ़ा है इसमें जो है ना स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत फील हो रही है, पता नहीं मुझे क्यों फील हो रही है, रूहानियत जिसको कहते हैं, इस इंतखाब में रूहानियत है। और शायद मैं गलत महसूस कर रहा हूं तो संजू जरा बताइएगा, मतलब ये ऐसा इंतखाब है कि सुकून से एक एक मिसरे को पढ़कर समझ सकता है इंसान, फौरन नहीं समझ सकता, लेकिन जितना मैंने रवानी में पढ़ा है उससे मुझे इस इंतखाब में रूहानियत नजर आई है। आप संजू इस पर कुछ कमेंट्स कीजिएगा प्लीज। ईद तो अब हुई है, हमारी प्यारी सी बहना संजू जो आ गई हैं, शुक्रन आपके शो में, मेरी तरफ से उन्हें कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा ईद के मौके की मुनासिबत से। न जाने किस तरह इश्क कर रहे हैं हम, न जाने किस तरह इश्क कर रहे हैं हम, जो हमारा हो ही नहीं सकता उसी पे मर रहे हैं हम। ले जी, और टैग टीम जारी हो सारी, यानी कि नदीम अंसारी भाई हमारे जो हैं वो टाइम खत्म होने की बुनियाद पर जा चुके हैं और गुफरान भाई आ चुके हैं। अनीसा कह रही है भाई नुसरत फतेह अली, नुसरत नहीं सुना सकते तो आसिम अजहर का कोई है गाना हो जाए। अनीसा बिल्कुल दोनों सुना देंगे आपको, आसिम अजहर भी सुनाएंगे और वो भी सुनाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, एक गुफरान भाई क्या हाल है आपका, आपका ऐलान हो चुका है तो गुफरान साहब आ चुके हैं। और ब्रेक की जानिब जाएंगे।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।

वेलकम बैक हबीबी। मैसेजेस तो आपके आए जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ट्रैक भी तो आपको सुनाने हैं ना। तो अब जिस गाने की जानिब हम बढ़ रहे हैं वो ट्रैक स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं जनाब निगत को, माहीन को, जी बी एन को, शेरबानो को, अयूब आफरीदी की जानिब से ये ट्रैक एलो फड़ो।

0: भाई क्या बात है भाई, मैशअप ट्रैक था और हमारे अयूब लाला को यानी कि अयूब आफरीदी भाई को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा जी सॉन्ग बहुत अच्छा आया, मजा आ गया। और कहते हैं कि कुछ इस अदा से थोड़े हैं ताल्लुक जी, इस थोड़े इस कुछ इस अदा से थोड़े हैं ताल्लुक, जीबीएन ने एक मुद्दत से ढूंढ रहा हूं कसूर अपना। हाय हाय हाय हाय, छोड़ने वाले का भरम रखना था सो हमने खुद को बेवफा लिखकर कहानी खत्म कर दी। हाय हाय हाय, जो मैं हूं उसे कोई जानता ही नहीं और जिसे सब जानते हैं वो मैं हूं ही नहीं। वाह वाह वाह वाह, लाला आप तो फुल टाइम स्पीड में जा रहे हैं। गोश्त कितना खाया? अबे कोई बता दो यार, रेसिपी वगैरह भी बताओ, सिर्फ नौरीन ने बताई है। संजू भी आ गई, अब तो संजू आपको भी बताना चाहिए कुछ स्पेशल डिश। और संजू कह रही है बिल्कुल सही समझे हैं, भेजा ही आपको इसलिए था, आप फौरन समझ लेते। ये अदा आपकी मुझे भाती है। मेरी बहुत प्यारी नौरीन बहना जरीन नूर नाराज हसीना रुबाब को भी कोई सॉन्ग हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, कह रही निक ने मुश्क तो बड़ा दिलरुबा सा रखा है, नाम ही उनका दिलरुबा है, मुश्की भी दिलरुबा नाम है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, मुश्क तो खुशबू है। हाय हाय, वो क्या था, दिल में उतर जाएगा खुशबू। वाह गुफरान भाई आ गए, पता चल गया भाई। बहुत खूब, गुफरान जो है इंतहाई शरारती बिल्ला है। और जनाब आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। रेहान आ गए हैं, कैसे हैं रेहान आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिर्जा साहब भी आ गए, और क्या बात है जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात। जमा खान द गुलू रू रू राजा, क्या बात है, कमाल कमाल नदीम भाई, पख्तू मिशब के क्या कहने हैं, जबरदस्त यार, आपको पख्तू पूरी दी जबरदस्त दीदा स्वीकार ना ये भाई। मैंने किसी की याद में कुछ लाइंस लिखी हैं, मैं वो लिख रही हूँ, पहले आप पढ़ लेना फिर ऑन एयर करना। बिल्कुल सही है, जाहिर है मुझे हिज्जे करने पड़ेंगे ना, तो अनीसा जल्दी से भेज दो, यानी कि समझ रही है ना। हेलो नौरीन ने भी ईद पर कुछ लिख दिया भाई, बहुत कुछ लिख दिया, अरे इतना कुछ है। कह रही है अब ईद भी पहले जैसी नहीं लगती, शायद कुछ लोग जिंदगी से चले जाएं तो खुशियां भी साथ ले जाते हैं। हाय, बहुत टची किस्म की जो है ना बात लिखी है आपने नौरीन। कहना तो बहुत कुछ था मगर दिल ने खामोशी चुन ली, बस इतना ही काफी है कि तुम्हें दिल से ईद मुबारक। हाय हाय हाय हाय, इसी बात पर आपकी मैसेज को मुकम्मल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

वेलकम बैक आएंगे ओ मेरे मन में तू। अच्छा जनाब कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसकी वजह है फौरन से बेशतर आपको एक और प्यारे से ट्रैक की जानिब लेकर जाना है मैंने। और अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे मैसेजेस क्या करें भाई। हम हमारी प्यारी सी बहन नौरीन कह रही है लाइव आ जाए। नदीम भाई आ जाएंगे लाइव, पहले आपका वो दूसरा इक्तबास तो पढ़ लें ईद के हवाले से। बल्कि काम करेंगे कुछ ही देर बाद लाइव आएंगे आज, मैं वैसे इरादा रखता था कुछ कि आज लाइव आना है। और लाला क्या कह रहे हैं, लाला भी कुछ कहने वाले हैं। मुश कह रही है मजाइया गजल है पहले पढ़ लें।

0: वेलकम बैक कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी। तेजी से मैसेजेस पढ़ता हूँ ताकि कुछ चर्चा भी कर लूँ। अच्छा भाई आसिफ का मैसेज हो गया तो आसिफ शहजादे ओके ठीक कहा ना मैंने। अच्छा यूसुफ भाई का मैसेज हो गया था और आसिफ का मैसेज अच्छा हाँ आसिफ का भी हो गया मैसेज। और आसिफ अपना पूरा नाम लिखा करो जैसे तुम लिखते हो हमेशा की तरह। और एक आदमी ने शादी के 20 साल की जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन उसको अपनी बीवी पर तरस आ गया और सोचा कि आज इसका दिल रख लेते रखने के लिए तारीफ कर दूं। घर गया तो दाल खाते हुए हर लुकमे पर वाह वाह करने लगा। बीवी किचन से रोटी पकाने वाला बेलन लेकर घुमा के उसके सर पर दे मारा और कहा 20 साल मैं तो कभी मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल भेजी तो तुम्हारे मुंह से वाह वाह खत्म नहीं हो रही। सलीम एवन आपने सर पर पट्टी करवाई थी या नहीं करवाई थी ये बताइए। अयूब कह रहे हैं कि जिगर गुफरान भाई और आप कैसे हैं गुफरान भाई ओके ठीक हम भी ओके ठीक। नदीम भाई मैं अफगानी पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ। गुलाम सरवर भाई अफगानी पुलाव बनाते हैं आप जबरदस्त यार। बन्नू का पुलाव खाया कभी किसी ने? अच्छा इस हवाले से मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी बताऊंगा। बन्नू का पुलाव बहुत कम लोगों ने जो है वो टेस्ट किया होगा और बन्नू पुलाव जो है वो बाजार में भी ज्यादा पॉपुलर यू कैन से कि नहीं है। बहुत कम शॉप्स हैं बन्नू पुलाव की और वैसा भी वो बन्नू वाला पुलाव का जायका भी नहीं मिलता। और आपने अगर किसी ने खाया है बन्नू का पुलाव तो वो बताया भाई मुझे और उसके बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और नौरीन सिस्टर ने बिल्कुल ठीक लिखा है अयूब आफरीदी कह रहे हैं बलोच गोट औरंगी से अता मोहम्मद डाडो डोडा और आपका चाची जुलेखा शो सुन रहे हैं। भाई बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप शो सुन रहे हैं। जिगर कह रहे हैं कि अल्लाह की शान देखो कि सलीम भाई को फालूदे से इश्क हुआ है जो हर वक्त अवेलेबल होता है हमारी तरह मुश्किल में नहीं है। ये बात भी सही है। तामीर कह रहे हैं नदीम भाई आतिफ असलम का गाना अगर हो जाए तो क्या बात है। भाई आपके लिए तो नहीं चलाएंगे हम, अगर हमें हमारी छोटी कह देंगी तो हम चला देंगे। मैंने आज क्या लिखा हुआ यार भूतिया बनाई है और सुने हो आपने बिल्कुल सही कहा है मेरा काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। बेवकूफ बनाया है बेवकूफ लिखा होगा उन्होंने बेवकूफ को क्या लिख दिया यार हमने। सलीम मेमन भाई ख्याल रखा करे यार। मुश्क कह रही है कि दुनिया ही सिमट आई मंजर में कहीं से एक रंग जो तेरे मैंने तस्वीर में डाला एक रंग जो तेरा मैंने तस्वीर में डाला वाह वाह वाह वाह वाह। और दिल के आंगन में बैठा है कोई जिंदगी सजा गया है कोई खिलते गुलाब की तरह से है कोई अक्सर यादों में सारा है कोई जैसा टूटे ख्वाब सजा गया है कोई दिल आंगन में बैठा है कोई चेहरे तो लाखों देखे हमने मगर उस जैसा न देखा कोई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह भाई नीसा क्या बात है आप तो शायरा बन गई हैं। मिर्जा साहब गेंदे पेने सॉरी नदीम भाई ईद मुबारक बोलिया नहीं मेरा और मेरी तमाम घर वालों की जानब से नदीम भाई को और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत ईद उल अजहा मुबारक हमेशा सलामत रहे आप सब आप भी सलामत रहे ताकयामत रहे बड़े मिर्जा साहब कितने और हमारे नाजिश भाई का है हैं जी हैं जी आज तो बिजी होंगे सारे मैंने खाया है पुलाव फैसलाबाद में एक बहुत अच्छी जगह से मिलता है नदीम भाई अच्छा बन्नू का पुलाव खाया हुआ है भाई और किस किस ने खाया हुआ है बन्नू का पुलाव अरे इनका एक और इक्तिबास था वो भी पढ़ लें ईद गुजार दी हमने तुझसे ईद मिले बगैर इससे बड़ी कुर्बानी हमसे न दी जाएगी क्योंकि खुशी तो अपनों से होती है लेकिन दूसरी तरफ हम हैं जिनके हाथ आपकी मौजूदगी से खाली हैं और जिनके दिल उदास हैं हमारे लिए ये ईद खुशी की बजाय आपकी कमी का एहसास बनकर आई है जब जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे प्यारा इंसान ही पास ना हो तो खुशियां मनाने का दिल नहीं करता ऐसे में मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है हमारी तन्हाई और आपकी दूरी हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम इस मौके पर खुश होने के बजाय अपनी महरूमी का सोग मनाएं सच तो यह है कि ईद का सारा रंग आपके दम से था आप नहीं तो कुछ नहीं आप नहीं तो कुछ भी नहीं अकेलेपन के सफर में अब सिर्फ यादें हैं ईद मुबारक अच्छा जनाब ये ईद मुबारक जो है ये मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने अपने शौहर को डेडिकेट की है और मैं पढ़ के आपके एक एक लफ्ज को मैंने महसूस किया है अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे और नौरीन अभी आपके साथ आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से उनके भी बच्चे हैं तो खुशियां बांटे ये जिंदगी है जिंदगी में इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में नदीम भाई मेरा गाना काला जी सरवर ये कौन सा गाना भाई काला जी का काला और जिगर मैंने बन्नू का पुलाव खाया है मैंने ना बानू का पुलाव खाया है ये बानू भी आ गई मैंने सोचा वैसे गुल बानू तो है एक शेर बानू है तो इनके दिमाग में बस बन्नू की बजाय बानू लिख दिया अभी भाई ये बानू लफ्ज आपके दिमाग में कितना सवार है बन्नू की जगह बानू लिख दिया अच्छा वैसे बानू ने आपको पुलाव खिलाया नदीम भाई अच्छा मुझे वो वाला गाना मैसेज हो गया अरे क्या बात है भाईजन क्या बात है हाँ तामीर भाई कह रहे हैं नाया कह रही है कि चाचू के साथ बाहर घूमने गई अच्छा नाया घूमने गई तो फिर हम आपके लिए भी चला देंगे वो ही वाला ट्रैक जो आपने कहा है मगर अभी नहीं अभी तो हम दूसरे गाने चला रहे हैं कहाँ गया गाना हाँ जी भाई नुसरत फतेह अली साहब की फरमाइश की थी हमारी अनीसा ने तो मेरी प्यारी सी बहना आपने जो गाना कहा था वो वाला तो नहीं चला रहे लेकिन नुसरत फतेह अली साहब का एक और गाना है वो आपको सुना रहे हैं और उसके साथ साथ जनाब एक और गाना भी चल रहा है और ये ट्रैक जो है ये ट्रैक पख्तों का ट्रैक होगा नुसरत फतेह अली साहब के ट्रैक के बाद और वो पख्तों का ट्रैक जो है वो हमारे अय्यूब लाला को डेडिकेट हो रहा है उनकी जानिब से डेडिकेट हो रहा है अब मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ गए होंगे तो जनाब पहला ट्रैक अनीसा के लिए एलो फड़ो अनीसा के ट्रैक से पहले हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365
0: वेलकम बैक कहेंगे जनाब, और अब हम उन्हीं डेडिकेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। हेलो पढ़ो।

0: वेलकम बैक सुने हो। और आपने दो ट्रैक सुने और उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आए होंगे। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। ईद उल अजहा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है, ईद कुर्बा। क्या क्या कुर्बा किया आपने, ये आपने बताना है। किस रंग के कपड़े पहने, गोश कहाँ कहाँ बांटा और क्या क्या खाया, स्पेशल क्या डिश है, कोई स्पेशल डिश अगर आप बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा जनाब, शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाल की स्पेस दीजिए अपना प्यार सुना प्यार सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। जो लोग मुझे मैसेंजर पर जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फौरन से पेशतर आ जाएं। कहां आ जाएं जनाब, फेसबुक पर आ जाएं और देखें भी और सुने भी। अभी फिलहाल हम जाएंगे एक छोटी सी नन्ही सी ब्रेक की जाने।
1: एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
0: facebook.com/fm247365 वेलकम बैक कहेंगे सुने हो तो। जना मैं कह रहा था, मेरा नाम है नदीम अख्तर और फिर से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोने। कह ये रहा था कि जो मैसेंजर में मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, जैसे मुश्क हो गई, हमारे अयूब अफरीदी भाई हो गए, उसके साथ साथ अनीसा हो गई और नौरीन तौसीफ, सब लोग आ जाओ यहां पर और आकर यहां पर आप मैसेजेस कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की ही जानिब। आसिफ अली कह रहे हैं क्लिफ्टन से, सर मैंने बन्नू का पुलाव हैदराबाद में खाया था। बन्नू में किसी ने खाया है? वाह वाह वाह वाह, मैं लाइव हूं आपको पता है ना, तो इंसान बन जाए। अच्छा जनाब, बन्नू का पुलाव खाया हमने? नहीं खाया। हमारे अयूब अफरीदी ने बानो का पुलाव खाया है। वाह वाह। और अनीस कह रहे हैं कि ईद मुबारक मेरी तरफ से सब सुनने वालों को, एफएम 100 की पूरी टीम को। अल्लाह करे जल्द से टेलीफोन सही हो जाए, हमारी भी दुआ है भैया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ आ गई, कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखो नौरीन, तुम्हारे कहने पर हम आ गए। मुश्क देख रही है, आई नहीं है। यार भाई तंग कर रहा है मुझे ये बहुत, जो देख रहे हैं ना इस वक्त उनको बता रहा हूँ। मुश कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब लाला कह रहे हैं जिगर टाइम का पता नहीं चला, हमेशा 3 घंटे का शो किया करें। अच्छा हुआ आपकी ज्यारत हो गई। अरे बस कर जाए। वैसे वाकई में यार हैरत अंगेज बात है कि आज हकीकत में मुझे भी नहीं पता चला बिल्कुल ही 3 घंटे का। मुश्किलियां आ गई हूँ, शाबाश। और अनीस के मैसेज के बाद यहां पर भी अयूब लाला कह रहे हैं कि जबरदस्त, वाह भाई। और ये भी जबरदस्त सॉन्ग है वो कह रहे थे। और टाइम का पता नहीं चला, यहां पर भी उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल अयूब लाला, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक यहां पर जो है शायद बढ़े, तो क्यों ना आप लोगों को एक ट्रैक की जानिब लेकर जाया जाए। ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी अनाया को, तामीर की जानिब से ब्यूटीफुल ट्रैक है एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जरी नूर भी आ गई हैं और कह रही हैं जरीनू तुम्हारा मैसेज समझ में नहीं आया। हैदरी मोटीना पर अभी नहीं, ये पता नहीं क्या है भाई, आइसक्रीम आइसक्रीम का वहां मिलती है कहीं हैदरी में। आज तो मुश्किल है, कल की अगर आप दावत दें तो आ जाएंगे हम। गुफरान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये गुफरान शरारती बिल्ले हैं। और चाय पी जा रही है, हाँ देखा ना, जे की जगह के लगा दिया था आपने पहले, इतना पी नहीं लगाया पी या जी जी जी जी जी या पिया जिया पिया जिया सोने हो। अरे किसी ने रेसिपी नहीं बताई, अब मैं यकीन माने कि आप लोग सामने हैं तो गुफरान भाई को बता भी नहीं सकता कुछ, नहीं बता सकता भाई, नहीं गुफरान भाई आज आपने कुछ ज्यादा खा लिया लगता है। सलीम मेमन गायब है, सारे गायब है भाई, संजू भी गायब हो गई, और आसिफ कहाँ रह गए हो तुम? खैर आप लोगों को गाने भी तो डेडिकेट करने हैं ना भाई। अच्छा भाई संजू को गाना एक डेडिकेट करना था, तो संजू के लिए ट्रैक जो है वो हम फौरन से पेशतर चलाते हैं, और इस ट्रैक के बारे में ये बताऊं एक्सक्लूसिव ट्रैक है और उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। जरी नूर की जानिब से और हम सब की जानिब से संजू आपके लिए ये गाना है एलो भड़ो।

वेलकम बैक कहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और जरीन ने थैंक्स कह दिया ट्रैक के लिए और अनीसा कह रही है थोड़ी देर अच्छा अनीसा आपसे तो बात हो ही रही है मुश्क कह रही है कि इश्क मुझे तुमसे हुआ है जी बिल्कुल ये मुर्तजा कजल बाहश हैं इसके सिंगर और मुझे इनके दोनों ट्रैक बड़े पसंद हैं और ये ट्रेंड पर भी काफी रहा है आप लोगों ने सुना होगा ये इफ्तिखार आ गए हैं इफ्तिखार साहब और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई आपको और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए आमीन सुम आमीन और जनाब आपको भी लंबी उम्र अता फरमाए समीर भाई गायब है वो गायब रहेंगे गुफरान भाई आपको बताया था वो पार्क में इस वक्त घूम रहे हैं और घुमा रहे हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में अच्छा ही किया इस तरह होता रहता है अभी जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब FM 24/7 365 वेलकम बैक शायद आज कहीं अच्छा ये मैसेज हम बाद में पढ़ लेंगे फिलहाल जो है वो आपकी फरमाइश देखनी है कहाँ गया माउस कहाँ गया भाई नजर ही नहीं आ रहा आ गया हाँ तो जनाब अभी एक और ट्रैक की जानिब जाना है और इसकी डेडिकेशन भी है और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब जिंदगी जिंदगी साथ है अनीसा का गाना हो गया था हाँ जी जिंदगी नहीं नहीं जिंदगी का ट्रैक तो हमने बाद में चलाना है वो कहाँ गया ये रहा ये ट्रैक जो है मैं इस वजह से एंड में चला रहा हूँ इसकी भी फरमाइश आई थी कि ये काफी पुराने दौर का ट्रैक है ऑलमोस्ट यू कैन से कि तकरीबन 40-45 साल पुराना और फिल्मी ट्रैक है बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक है और खुश

0: वेलकम बैक कहेंगे। गाना बीच में कट गया गुफरान भाई,
1: जितना वीडियो में होगा अपना आया,
0: मतलब आप देख लीजिएगा लाइब्रेरी में दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब मैं आरजू लिखूं या जाने आरजू, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि हमारे जितने भी पुराने जवान हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनको पसंद आया होगा। और जनाब इसके साथ ही अब शो में बस समझ लीजिए कि चंद मिनट मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि दो गाने और चलाने हैं और वो ट्रैक्स जो हैं आप लोगों की समातों की नजर करने हैं, वो क्योंकि डेडिकेशंस हैं। एक जो नौरीन तौसीफ की जानिब से है जनाब, और एक जो है वो मेरी जानिब से है। तो पहला ट्रैक जो है वो हम जो चला रहे हैं, ये नौरीन तौसीफ की जानिब से संजू को डेडिकेट कर रहे हैं। अरे भाई ये तो बहुत बड़े बड़े हैं ट्रैक, एक ही चल सकेगा? कोई दो तीन मिनट का देख लूं मैं। यही चला देते हैं जनाब नौरीन तौसीफ की जानिब से। संजू भी आ गई हैं, तो संजू आपके लिए गाना एलो फड़ो। वैसे ये गाना नहीं, जो मैंने गाना चलाना वही चला देते हैं, थोड़ी देर ये गाना बीच में हम ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन अच्छा ट्रैक है, उम्मीद करता हूं कि संजू को पसंद आएगा। तो एलो फड़ो।

मैं वेलकम बैक कहूंगा इस ट्रैक के साथ ही, आपसे इजाजत भी चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआएं याद रखिएगा। इस ट्रैक के बाद जो ट्रैक चलेगा जनाब, वो जिंदगी के नाम। मुलाकात होगी आपसे कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अल्लाह हाफिज़।

जी हाँ बिल्कुल, ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलियो, गले मिलना चाहिए। बिल्कुल ईद का दिन जो है वो यकीनन एक ऐसा दिन है कि जिस दिन तमाम गुज़श्ता गिले शिकवे भूल जाने चाहिए, अपनों से भी दुश्मन से भी कोशिश करें कि सबसे गले मिलें, तमाम गिले शिकवे भुला दें, गुज़श्ता जो कुछ हुआ सो हुआ भुला दें, उसको भुलाने के बाद एक दूसरे से गले मिलें और आगे की बात करें। जो गुजर गया सो गुजर गया, जो गुजर गया वो किसी का भी वक्त नहीं था, गुजर गया, इसीलिए किसी के हाथ में नहीं रहा वो। तो इसीलिए कहते हैं कि ईद का दिन इसीलिए होता है कि बस तमाम गिले शिकवे बुलाकर गले मिलें और फिर एक नई जिंदगी को आगे लेकर चलें। जी यहां तो बात हो रही थी कि ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, बहुत रिक्वेस्ट, बहुत सब कुछ हो रही, वो एक यूं समझिए इतना कुछ करने के बाद भी जिद अगर रहे इंसान की, तो फिर जिद जब ज्यादा जिद हो जाए तो जिद के बाद भी फिर एक और जिद को खत्म करने का एक और तरीका भी होता है, वो है कौन सा,

जी वाकई जिंदगी को गुजारने के लिए वाकई ये हकीकत है बस, और बड़ा खूबसूरत ट्रैक 90s की खूबसूरत यादों में से, और हमें ज्वाइन किया शाजिया अनीस ने, हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू जजाकल्ला, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। कैसा रहा आज का दिन? खूब अगर कुर्बानी की होगी तो खूब मसरूफियत भरा दिन होगा, थकावट से भरपूर दिन होगा। तो आपको बहुत खुश आमदीद, आपको आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब यूं करते हैं कि आते हैं माजी की यादों में से कुछ यादें कुछ निकालते हैं। और शादी अगर आप शुरू से सुनती नहीं तो आपको ये सुन के गाने याद आए होंगे कि माजी में ये खूबसूरत ट्रैक जो ये बहुत ज्यादा प्ले होते थे और मैं काफी प्ले करता था ये गाने। और खासतौर पर शफीक रहमान हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, अल्लाह इनकी मगफरत करे, बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा अच्छी इनकी आवाज थी। और अब यूं करते हैं कि शामिल करते हैं जनाब ये एक आवाज। मूड आज एक जैसा ही है क्योंकि शो है ईद का हारमोनी, ईद हारमोनी और वक्त आपके नाम, खूबसूरत सी यादों को एक वक्त जो मिला है इसको जरा एंजॉय करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ये किन थकावटी होंगी, थके हुए भी होंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते जब सुने थोड़ा सा रिलैक्स माइंड ही थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी।

ये गाना तो एक्चुअली लाका रात में फतेह अली खान साहब के बाद, और अब शामिल करते हैं एक और ट्रैक अनवर और शाजिया मंजूर की आवाज में।

प्रोग्राम यकीनन आप एफएम पाकिस्तान के क्रासी स्टेशन से मुझे सुन रहे हैं। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेरा साथ है और प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पर आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो मुझे आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक फेसबुक पर मौजूद है।

जानू जानू ओ मेरे दिलवर जानू, जानू जानू ओ मेरे दिलवर जानू। अनवर रफी और शाजिया की आवाज थी जनाब, और ये बिल्कुल नया गाना तो नहीं था मगर मीडियम सॉन्ग था, हमारा 2000 की सीरीज का सॉन्ग था मगर फिर भी बेहतर था। और अब यूं करते चाहते हैं कि और ट्रैक अनवर रफी की आवाज में बड़ा अच्छा ट्रैक है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आप YouTube पर मौजूद है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रोग्राम को देखें तो लाइक और डिसलाइक ये आपका ऑप्शन है, आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप वो करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दें, प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर दें। तो अब शामिल करते हैं अनवर रफी के बाद में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, जमाने में बड़े अजीब अजीब से लोग होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जानते हैं कि जिनसे हमारा रिश्ता, जो हमारी गैदरिंग में, जो हमारे ताल्लुक में होते हैं, वरना लोग दुनिया में लोग अजीब अजीब से होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कैसे, जैसे रफी बता रहे हैं।

ये तिराना कुछ बेहतर नहीं था मेरे ख्याल में कुछ, इसलिए हमने तिराने को आउट कर दिया। हम आ जाते हैं एक और चले, मैं आप सुनवाता हूँ आपको वो ट्रैक कुछ मेरा मोस्ट फेवरेट 90s से, आवाज शफीक रहमान साहब की है और ये ट्रैक मैं आप तमाम ही सुनने वालों को जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं या जो सुनेंगे या प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, तो आप सबको मैं डेडिकेट करता हूँ आज ईद के मौके पर अपनी तमाम मोहब्बतों के साथ, अपने तमाम अकीदतों के साथ आपके नाम ये खूबसूरत पैगाम है।

हाँ यही तो प्यार है। प्यार तो प्यार होता है और प्यार की कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, मगर आज के दौर में ये सब चीजें पीछे रह गई। अब आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझता हूं कि शायद मैं गलत भी हूं, मगर अब लोग नफसा नफसी के दौर में ज्यादा दाखिल हो चुके हैं। अब प्यार व्यार ये सब चीजों में बस ऐसी बस कहने की चीजें रह गई हैं। बात है कि जहां तक आप जिसके लिए फायदेमंद है आप चलेंगे साथ साथ, तो प्यार कह लें, एहसास कह लें, मोहब्बत कह लें, अपनाइत कर लें, जहां काम खत्म, रिश्ते खत्म, ताल्लुक खत्म, एहसास खत्म। और यही वजह हमें मजमे में अकेला कर रही है, क्योंकि आज भी भरे मजमे में हम अकेले ही होते हैं। होता एक मजमा हमारे साथ है, मगर जाहिरी और बातिन में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, कहने को भी बहुत कुछ है, मगर उनके अंदर दिल में क्या है ये आप नहीं जानते। भरे मजमे में आप तन्हा होते हैं, और कभी तन्हाया होते हुए भी आप एक भरे मजमे में बैठे होते हैं। ये एक यही एहसास है बस, और ये एहसास जिस दिन हमारे अंदर जाग गया, उस दिन हम एक दूसरे से नफरतें, ये तमाम चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। हमारे मसाइल, बहुत ज्यादा मसाइल जितने हैं वो तकरीबन कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जब एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होंगे, एक दूसरे की खुशियों को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, उनकी खुशियों में शामिल होंगे, उनकी खुशियों को बढ़ाएंगे, तो यकीन इस तरह जब हम किसी की खुशियों में शामिल होते हैं तो वो भी फिर हमारे साथ इसी तरह शामिल होगा, और इसी तरह फिर आपस की नफरतें, नाइतफाकियां, गलत फहमियां, गिले शिकवे सब खत्म होंगे। और फिर ये जो दौर हम नफसर अफसी का जो चल रहा है कि हम एक तो बस साथ होते हुए भी हम साथ नहीं होते, तो ये चीजें खत्म होंगी। उस वक्त खत्म होंगी जब ये सब तमाम चीजें हम अपने अंदर से खत्म करेंगे। मगर हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते ही नहीं है, हम नहीं कोशिश करते कि हम बेहतर हो जाएं। हम ये कहते हैं कि बस वो सामने वाले को बेहतर करने के लिए लगे होते हैं, सामने वाले को पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें ये गलती है, ये है, ये है, ये है। हम अपने आप को देखते ही नहीं है। जिस दिन हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने अपना एहसास अपने आप को समझना शुरू कर दिया, उस दिन यूं समझ लें कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होगा। मगर शर्त यही है कि सबसे पहली शर्त यही है कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, नामुमकिन सी बात है, कुछ भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपके कहने से कोई सही नहीं होगा। जब हम खुद अपने आप को सही नहीं कर पा रहे तो हमारे कहने से दूसरा क्या खाक सही होगा, कभी नहीं हो सकता। बस कोशिश हमें करनी है, फर्तन फर्तन हम खुद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जिस दिन हम अपने आप को, हम कहते हैं अपने अंदर के इंसान को जगा लेंगे, उस दिन बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारे मसले।

ये भी 90s का सॉन्ग था और ये उस दौर का कि जब कैसेट्स का दौर था, कामरान जही की आवाज थी, मगर सुध का म्यूजिक वाकई बड़ा क्लासिक म्यूजिक होता था। और वक्त 2:00 तकरीबन 42 मिनट हो चुके हैं, 3 बजे तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी, जो कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी 12 से 3 बजे ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और अब शामिल करते हैं अमीर अली और शाज़िया मंजूर की आवाज़।

और तहमीना सरदार की, ये भी 90s की रिकॉर्डिंग है और 90s में वो वही कैसेट के दौर की। कोशिश करिए कि कुछ पुराने नगमे जो हैं वो आज से ज्यादा बेहतर हैं, मूड के हिसाब से भी सही है और शायरी के हिसाब से भी सही है।

लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेलों, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100 FM.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।